मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 16 जून सन 2026, सुबह के 5:57 होने वाले हैं।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिसे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न

0: क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया

0: डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे। जमीन में उपलब्ध अधिकांश पोषक तत्वों का क्षय फसल उत्पादन द्वारा होता है, लेकिन विभिन्न फसलें एवं उनकी प्रजाति एक निश्चित मात्रा तक ही उनको ग्रहण करती हैं। कुछ फसलों में उर्वरक ग्रहण करने की क्षमता बहुत नगण्य होती है या उदासीन होती है। ऐसी फसलों में उर्वरक देने का लाभ बहुत ही कम होता है। फसलों की जड़ प्रणाली भी उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाने से जुड़ी है। जिन फसलों की जड़ें मूसला होती हैं, उनमें उर्वरक मिट्टी की सतह पर न देकर कुछ गहराई में देना चाहिए। छिछली जड़ वाली फसलों में उर्वरक मिट्टी के ऊपरी सतह पर दिए जाते हैं। यदि घनी फसल है तो उसमें कम मात्रा उर्वरक की डालने पर पौधों को कम मात्रा में उर्वरक मिल पाता है तथा ग्रहण करने में प्रतिस्पर्धा रहती है। यदि विरली फसल है

0: और उर्वरक की अधिक मात्रा प्रयोग की गई है तो खाली स्थान पर पड़े उर्वरक का कोई उपयोग नहीं हो पाता। अतः इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक वर्ष में यदि ज़्यादा फसलें लेते हैं तो अधिक एवं यदि एक वर्ष में कम फसलें लेते हैं तो कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। उर्वरकों के प्रभावशाली उपयोग में फसल चक्र का बहुत महत्व है। अच्छे फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश होता है जिससे कम उर्वरक से भी अधिक पैदावार मिलती है। जिन फसलों में खरपतवार अधिक होते हैं उसमें उर्वरक का अधिकांश भाग खरपतवारों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है जिससे मुख्य फसल को उर्वरक कम मात्रा में मिलते हैं तथा उपज कम हो जाती है और उर्वरकों का व्यापक नुकसान होता है। अतः उर्वरकों का पूरा फायदा लेने के लिए खरपतवारों को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके बाद ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। फसल की बुआई का समय भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान करता है। यदि समय पर फसल की बुआई करते हैं तो कम उर्वरक से भी अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत समय पर बुआई न करने से अधिक उर्वरकों के प्रयोग से भी अपेक्षित उपज प्राप्त नहीं हो पाती है। अधिक विलंब से बुआई करने पर उर्वरक का अधिकांश भाग फसल के लिए लाभकारी नहीं रहता है। खेत की तैयारी में उर्वरक के समुचित उपयोग का अपना महत्व है। अच्छी तैयार भूमि में फसलों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है तथा जल्दी ही जड़ें उर्वरक को घोल के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। इसी तरह यदि भूमि की तैयारी अच्छी तरह न की जाए तो पौधों की जड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाता है तथा पर्याप्त उर्वरक का उपयोग फसलों के लिए नहीं हो पाता है और अधिकांश पोषक तत्व बेकार हो जाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाएं विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

भगवान राम के प्रिय बलशाली हनुमान, जिनके लिए जगत का कोई भी कार्य कठिन नहीं है, उनकी उपासना से हम सभी के कार्य सिद्ध होते हैं।

हम सब उस परम शक्ति के अंश हैं जो नित्य है, अतः हमारा जीवन प्रभु नाम स्मरण में ही बीतना चाहिए।

हे शक्ति स्वरूपा माँ, तुम ही सृष्टि का आधार हो। हे संपूर्ण जगत की जननी, भक्तों का जीवन भयमुक्त कर खुशियों का संचार करो।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे हरिओम शरण, अनूप जलोटा, जगजीत सिंह और डॉक्टर रमा सेन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु। विषय है आत्मनिर्भरता।
1: कई बार पराजित होकर निराश राजा ब्रूस एक गुफा में चुपचाप लेटा था। उसने देखा कि एक मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है और गिर पड़ती है। राजा देखता रहा, मकड़ी चढ़ती गिरती रही। अंत में मकड़ी अपने प्रयत्न में सफल हो ही गई और चढ़ते चढ़ते छत पर पहुंच गई। राजा ब्रूस को मकड़ी की इस सफलता से आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का गुरु मंत्र मिल गया। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शत्रु पर आक्रमण किया और इस बार वो विजयी हो ही गया। आत्मनिर्भरता का अर्थ है पर निर्भर होना। वो किसी पर आश्रित नहीं होता, अपने कार्य के लिए दूसरे का मुंह नहीं देखता, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। नेपोलियन ने कहा था, असंभव कोई शब्द होता ही नहीं। एक लकड़हारे के बेटे अब्राहम लिंकन

0: निर्भरता के बल पर ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी आदि महापुरुषों का जीवन आत्मनिर्भरता का पर्याय है। आत्मनिर्भरता सच्चे पुरुषार्थ को जन्म देती है। जो पुरुषार्थी हैं, सफलता उन्हीं का वरण करती है। स्वावलंबन से व्यक्ति उत्साही, पराक्रमी, निर्भीक और धैर्यवान बनता है। सिकंदर ने बंदी पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने कहा, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये थी पोरस की चारित्रिक दृढ़ता। एक बार एक पथिक थका हुआ भूख प्यास से व्याकुल पेड़ के नीचे बैठा था। उधर से जाते हुए दूसरे पथिक ने पूछा, मित्र तुम इस तरह व्याकुल भ्रमित क्यों हो? पथिक ने उत्तर दिया, मेरे पास दो गठरियां थीं, वे कहीं खो गई हैं। उसने पूछा, उन गठरियों में क्या था? पथिक ने उत्तर दिया, दृढ़ता और संकल्प, ये दोनों उन गठरियों में थे। उन्हीं के खो जाने से मैं दिशा भ्रमित हो गया हूं। इस बार दूसरे पथिक ने एक गठरी उसे पकड़ाते हुए कहा कि इस गठरी में है आत्मनिर्भरता, इसके रहते तुम कभी भी पथ से डिग नहीं सकोगे, तुम्हें अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। सच है, बिना आत्मनिर्भरता के सफल जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, विषय था आत्मनिर्भरता। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें असामान्य रक्तचाप से होने वाली समस्याएं और समाधान, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव।
1: डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव, MBBS, MD मेडिसिन, फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट। मैं आज आप लोगों के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। पहली चीज, ये ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कब किसी को बोलते हैं, हाँ इनको हाई ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 अगर सिस्टोलिक हो और डायस्टोलिक 80 हो तो इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 120-80 के नीचे किसी का ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल है। आज की डेट में अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में हो और डायस्टोलिक 80 के भी नीचे हो तो इसे इलिवेटेड बोलते हैं कुछ लोगों के साथ। लेकिन स्टेज वन हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब किसी का बीपी 130 से 139 के ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक 80 से 89 के ऊपर हो जाए। स्टेज टू हाइपरटेंशन उस कैटेगरी के लोगों को बोलते हैं जब किसी का ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं कि अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर

0: हो और डायस्टोलिक्स 120 के ऊपर हो। सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर में क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, कई बार ब्लड प्रेशर में कोई सिम्टम्स नहीं मिलता है लोगों को, लेकिन यह कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो कई बार लोगों को चक्कर आता है, सर दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है। बहुत बार लोग अस्पताल जाते हैं, कोई किसी को ब्लड देने गया तो वहाँ जाँच में पता चला उनको ब्लड प्रेशर है। कई बार ब्लड प्रेशर में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से अगर दिमाग की नस फट जाए तो फालिज भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको नियंत्रित करना या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हर हालत में कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर 120-80 के नीचे रहे। ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से बहुत ढेर सारी परेशानियां आ सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर किसी को रह रहा है लगातार, तो उसकी वजह से उनको आँखों में समस्या हो सकती है, आँख से देखने में समस्या हो सकती है। कई बार आँखों के पर्दे पे सूजन आ जाती है, जैसे पैप्लिडिमा बोलते हैं। और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उस वजह से कई बार कुछ लोगों को गुर्दा खराब हो जाता है, और लॉन्ग रन में लंबे टाइम तक बीपी बढ़े रहने की वजह से गुर्दा खराब होता है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज की बीमारी हो जाती है। ऐसे ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर जिसको रहता है उनको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत होती है। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसमें गुर्दे की बीमारी और हार्ट डिजीज की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से कई बार लोगों को चक्कर भी आता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और दिमाग में ब्रेन की नसें फट जाए, जिसे बोलते हैं इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज, तो मरीज को पैरालिसिस हो जाएगी, कोमा में चला जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की वजह से कुछ लोगों को थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना भी ज़्यादा होता है। कई बार किसी किसी को खून में जो थक्का बनता है वो जाके नसों को ब्लॉक कर देता है, उसे सेरेब्रल इम्बोलिज्म बोलते हैं। सवाल ये होता है कि ब्लड प्रेशर लोगों को होता क्यों है भाई? ब्लड प्रेशर, देखिए, ये भी एक तरीके की लाइफस्टाइल डिजीज है। एक तो जेनेटिक्स भी होता है। मान लिया आपके माता पिता को ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होगी। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, अनियंत्रित लाइफस्टाइल है, खाने में अधिक वसा युक्त चीज़ें लेते हैं, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो उनका वजन ज़्यादा है, अनियंत्रित वजन है, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर भी होने की संभावना ज़्यादा होती है, डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें असामान्य रक्तचाप से होने वाली समस्याएं और समाधान विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है।

जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे खेल दर्पण और सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित प्रेम कुमार मलिक का गायन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत

0: गैर फिल्मी गीत और गजलों के कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा रात्रि 9:30। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे गजल, कलाकार होंगी बेगम अख्तर। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुन सकेंगे गीत एवं भजन, कलाकार होंगी ज्योति यादव। सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे रामनाथ और साथी। इनके गाए लोकगीत का आनंद आप कृषि जगत कार्यक्रम में भी ले सकते हैं। समय होगा शाम 6:30। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कृष्ण कुमार यादव की बातचीत, विषय होगा वसीयतनामा और उत्तराधिकार कानून। युवा अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और तनु जायसवाल का काव्य पाठ, धरती के गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीत। दिन 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम अंगनैया, जिसमें होगी आशीष झा की बातचीत, महिलाओं के लिए एआई की उपयोगिता, साथ ही होगा गीत संगीत। दिन 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड, फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे झंकार में, शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और शाम 7:31 पर रसरंग में। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा का समय होगा सुबह 8:45 और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः संबंधः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम, प्रवास, डिजिटल, तंत्रज्ञान, रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र 11 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, इससे

0: गुड मॉर्निंग बनारस। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लीजिए, एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
1: हेलो, मैं पूजा, पहचाना?
2: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाओ जो सब बुलाते हैं।
0: हाँ जी, पूजा लेकर हाजिर हो गई हूँ बनारस का नंबर वन मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, रोज सुबह जब हम घर से निकलते हैं ना, तो अपने साथ एक उम्मीद, एक दौड़ और एक मंजिल की चाह लेकर निकलते हैं, राइट? दिन भर भागते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ साबित करने के लिए। लेकिन इस भाग दौड़ के बीच क्या कभी

हम रुक कर खुद से पूछते हैं कि जिंदगी आखिर है क्या, बहुत ही गंभीर सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। दोस्तों, जिंदगी क्या है, इस पर किसी ने क्या खूब कहा है, हार जीत एक कहानी है और यहाँ का हर सफर एक सपना है। सोचिए जरा, हम अपनी जीत पर कितना घमंड करते हैं और अपनी हार पर कितने उदास हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है बॉस कि इतिहास गवाह है, जीत हो या हार, दोनों ही वक्त के पन्नों पर लिखी महज एक कहानी बनकर रह जाती है। आज आप जहां जीते हैं, कल वहां कोई और जीतेगा। आज आप जहां हारे हैं, कल वहीं से आपकी कामयाबी की एक नई दास्तान शुरू होगी। इसीलिए इस हार और जीत के ठप्पे को अपने दिल से जरा उतार कर फेंक दीजिए। असली मजा तो उस सफर में है जी, जिसे हम

उतार कर फेंक दीजिए। असली मजा तो उस सफर में है जी, जिसे हम रोज जीते हैं। और ये सफर एक ऐसे सपने जैसा है गुरु, एक ऐसा सपना जो हम खुली आंखों से देखते हैं। कभी इस सफर में धूप मिलती है तो कभी छांव, कभी कोई अपना हाथ थाम लेता है तो कभी तन्हाई गले लगा लेती है। लेकिन इस पूरे रास्ते में जो चीज सबसे खूबसूरत होती है वो है हमारा हर रोज गिरकर फिर से उठ खड़े होना। तो भाई, अगर आज दफ्तर में या जिंदगी के किसी इम्तिहान में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला तो मायूस मत होइएगा। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक छोटा सा पन्ना था। मंजिल पर पहुंचकर क्या करना है इसकी चिंता छोड़िए, जरा इस रास्ते की हवाओं को महसूस कीजिए। मुस्कुराइए, क्योंकि आप चल रहे हैं, आप लड़ रहे हैं और आप जी रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, जीत गए तो दास्तान बनेगी और हार गए तो तजुर्बा। कहानी दोनों ही लाजवाब होगी, क्यों, क्या कहती है बनारस की जनता। तो चलिए इस खूबसूरत सोच के साथ इस दिन को और भी हसीन बनाते हैं, क्योंकि सफर अभी जारी है और सपने अभी और भी देखने हैं। जिंदगी के इसी फलसफे को बयां करता हुआ किशोर दा की आवाज में सजा एक बेहद सुहाना तराना अब आपके लिए प्ले होने जा रहा है। सुनिए और अपनी रूह को थोड़ा सा सुकून दीजिए। बी पॉजिटिव। गुड मॉर्निंग।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 16 जून। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। बनारस अग्निवीर भर्ती योजना के तहत फौजी बनने का सपना सजोए 119,884 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा दी है। इस परीक्षा में 16,261 अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया। सैन्य प्रशासन ने रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों के लिए 1 से 12 जून तक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया था। अग्निवीर योजना में भर्ती पदों की संख्या में कई गुना वृद्धि के कारण रिकॉर्ड 136,145 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वर्ष 2020 में शुरू हुई अग्निवीर एक सैन्य भर्ती योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र बलों, नेवी और एयरफोर्स में अल्पकालिक सेवा का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 4 वर्ष के लिए भर्ती की जाती है। इसमें सामान्यतः 17.5 से 21 वर्ष के युवा भर्ती होते हैं। हालांकि कुछ भर्तियों में विशेष छूट भी दी जा सकती है। पहले वर्ष से चौथे वर्ष तक वेतन क्रमशः बढ़ता है। 4 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक मुश्त राशि दी जाती है, जिस पर आयकर नहीं लगता। अगली खबर ये है, बनारस की परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद मंगलवार यानी आज से स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं। हालांकि जनपद में पड़ रही चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों को राहत दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी परिषदीय स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अत्यधिक तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए छात्र हित में ये फैसला लिया गया है। बीएसए ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक सभी परिषदीय विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। बनारस सीर गोवर्धन गांव के 16 वर्षीय राहुल यादव ने मामा की टूटी हॉकी स्टिक से शुरू किया सफर और जापान की धरती पर भारत का तिरंगा लहरा दिया। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में मिडफील्डर राहुल ने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम ने मेजबान जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राहुल के माता पिता मिर्जापुर के मंझवा में रहते हैं। राहुल बचपन से मामा कमलेश कुमार यादव के साथ रहा। मामा को हॉकी खेलते देख राहुल का लगाव भी बढ़ा। अभ्यास के लिए नई स्टिक नहीं थी, इसलिए मामा की पुरानी टूटी हॉकी ही उनकी पहली गुरु बनी। उसे स्टिक से गेंद हिट करते करते राहुल ने हॉकी की बारीकियां सीख ली। स्वर्ण जीतने के बाद राहुल बोले, भारत के लिए खेलना गर्व है। मेरा सपना ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है। बनारस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने सत्र 2026-27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 17 जून कर दिया गया है। डॉक्टर भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय के समय में भी बदलाव किया गया है। अब पुस्तकालय के प्रथम तल पर स्थित साइबर लाइब्रेरी और अध्ययन हॉल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। अगली खबर ये है, बनारस की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षा समारोह को समय पर कराने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। विश्वविद्यालय परिसर और सभी संबद्ध महाविद्यालयों में बीते 28 मई से 9 जून तक संचालित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। इसमें प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा समेत शास्त्री व आचार्य के विभिन्न सेमेस्टर, नियमित, प्राइवेट, बैंक व विशेष परीक्षाएं शामिल रहीं। 30 जुलाई को दीक्षा समारोह का आयोजन होना तय हुआ है। परीक्षाफल शीघ्र घोषित करने के उद्देश्य से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कराया जा रहा है। बनारस मौसम की बात करें तो मानसून के काशी पहुंचने से पहले मौसम का मिजाज एक बार फिर गर्म हो गया है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। वहीं हवा की रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में नमी का स्तर 34% तक पहुंच गया। बढ़ती गर्मी और उमस के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग ने सोमवार को थंडर स्टॉर्म के प्रभाव से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने तत्काल आंधी पानी की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल मौसम की स्थितियां इसके अनुकूल नहीं दिख रही हैं। वहीं 25 जून तक मानसून काशी पहुंचेगा। बनारस यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों की स्क्रूटनी का सोमवार को अंतिम दिन था। सोमवार देर शाम को अपर

0: सचिव की ओर से 4 दिन के लिए स्क्रूटनी की डेट बढ़ा दी गई है। अभी तक 15 जून ही अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन स्क्रूटनी का काम न पूरा होने के चलते अब यह डेट 19 जून कर दी गई है। दरअसल वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय में सीसीटीवी की निगरानी में यह काम चल रहा है। इसकी निगरानी 4 सदस्यीय टीम लगातार कर रही है। स्क्रूटनी का काम पूरा होने के बाद जुलाई के अंत तक मार्कशीट उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय अपर सचिव भास्कर मिश्रा ने बताया कि इसमें ऐसे छात्र छात्राओं की कॉपियों की स्क्रूटनी कराई जा रही है जो अपने नंबर से असंतुष्ट थे। सो बनारस, ये तो बात हो गई, क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। और अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। ২০০৭ में आज ही के दिन सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी। 2008 में आज ही के दिन मशहूर शायर वसीम बरेलवी को प्रथम फिराक गोरखपुरी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1936 में आज ही के दिन उर्दू के मशहूर शायर अखलाक मोहम्मद खान शहरयार का जन्म हुआ था। 1920 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म हुआ था। और 1950 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। 1925 में महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का निधन हुआ था। 1944 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है प्रफुल्ल चंद्र राय का निधन आज ही के दिन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका रहता है आप सबको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: बनारस, जब हम थिएटर या नाटक की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े बड़े पर्दे, चमकती लाइट्स और सिनेमा हॉल की याद आती है। लेकिन नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, नाटक समाज का वो आईना होता है जो हमें सच देखने पर मजबूर करता है। और हिंदी नाटक को यह धार, यह तेवर देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बनारसी माटी के लाल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल थे। आज काशी रत्न में हम बात करेंगे रंगमंच के इसी महान जादूगर की। बनारस, 4 जून 1927 को वाराणसी के जलालपुर में जन्मे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने हिंदी नाटक और रंगमंच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊंचाई दी। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु और एक सत्य हरिश्चंद्र जैसे उनके नाटक आज भी थिएटर की दुनिया में मील का पत्थर माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी जानते हैं? उन्होंने नाटकों को राजा रानियों की काल्पनिक कहानियों से बाहर निकाला और बनारस की इन तंग गलियों में रहने वाले आम इंसान, उसके संघर्ष, उसकी टूटी हुई उम्मीदों और बदलते मध्यम वर्गीय समाज की उलझनों से जोड़ दिया। जब उनका कोई नाटक मंच पर खेला जाता था तो दर्शकों को लगता था कि अरे, ये तो हमारी ही कहानी है। डॉक्टर लाल सिर्फ एक नाटककार नहीं थे, वे एक बेहतरीन समीक्षक और कहानीकार भी थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर देश के बड़े बड़े मंचों तक उन्होंने रंगमंच की जो पौध तैयार की उसकी छांव आज भी हिंदी थिएटर को समृद्ध कर रही है। बनारस का जो अक्खड़पन है, जो सच को सच कहने का साहस है, वो उनके किरदारों में साफ झलकता था। आज इस बेताज बादशाह और काशी के इस अनमोल रत्न को हमारा कोटि कोटि नमन। अगर आज वो हमारे बीच होते तो हम उनका 99वां जन्म दिवस मना रहे होते। लेकिन उनके लिखे शब्द और नाटक आज भी उन्हें हमारे दिलों में अमर रखते हैं। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: हां जी बनारस, बस अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि पूजा समय हो गया है यहाँ से जाने का, क्योंकि पीछे समाचार हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, जाने से पहले अपना मंत्र कहना बिल्कुल नहीं भूलूंगी। जो बात मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि खुद से प्यार करना, खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश रख पाएंगे। सो डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।
2: हैप्पी।

गुड मॉर्निंग बनारस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जाँच के लिए गठित विशेष जाँच दल SIT पहुँची अयोध्या, जाँच शुरू। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें कल से शुरू हो गई। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी।
3: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
2: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान से हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसान स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ कल लखनऊ पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है, और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। इस अवसर पर सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस साल योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी। एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि एसआईटी के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के डीएम के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल वहां मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
5: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के तहत उत्तर प्रदेश नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीते 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र ने बताया कि इस योजना के तहत 7 श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रकार की रेसिपी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी पहुंची अयोध्या, जांच शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
7: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
8: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं ध्रुपद गायन। कलाकार हैं आशुतोष भट्टाचार्य, राग है आसावरी। आपके साथ पखावज पर संगति कर रहे हैं आदित्य दीप।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे ध्रुपद गायन। कलाकार थे आशुतोष भट्टाचार्य, राग था सावरी। आपके साथ पखावज पर संगति थी आदित्य दीप की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर

सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये

0: रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा वैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्ड्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमवर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

0: सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमरीकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई।

0: लोकसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at U.S. Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस

0: their Group G opening match at Seattle Stadium. Egypt came close to securing their first ever World Cup victory, but were denied by a quick response from Belgium's substitutes under the intense heat. Saudi Arabia and Uruguay also drew 1-1 in their opening match of Group H in Miami Stadium in the US this morning. Abdullah Al-Amri scored on a rebound in the 41st minute for Saudi Arabia, and Uruguay's Maxi Araujo responded with an equaliser in the 80th minute. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Sunil. The peace deal between the US and Iran is prominently noted on the front pages of dailies. US and Iran reach deal to end war, reopen Hormuz, headlines the Indian Express. US-Iran strike tentative peace deal as Israel refuses land pullback, reads the headline in the Statesman. Prime Minister Modi will lead the main event of the International Day of Yoga 2026 celebrations in Kolkata on June 21, writes the Asian Age. In its editorial piece titled Label Truth, the Tribune argues that FSSAI's action against misleading food labels is necessary, but only a first step. And that is back to you, Sunil.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross First Class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Avignon, France today to hold bilateral meetings with Prime Ministers of Canada and UK and UAE President. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। स्लोवाकिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना आलातरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अता किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में मुनाक़िदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म और मुत्तहिद अरब अमीरात के सदर के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लाने वाला भारतीय जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाके अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया, जबकि बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के आलातरीन सरकारी एजाज द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बावकार एजाज पर स्लोवाकिया के सदर, स्लोवाकिया की हुकूमत और वहां के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। एजाज कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि ये एजाज भारत के 1,40,00,000,000 अवाम और भारत व स्लोवाकिया के दरमियान देरीना दोस्ती के नाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये एजाज भारत और स्लोवाकिया के अवाम के दरमियान मौजूद खलूस, एतमाद और मोहब्बत के मजबूत रिश्तों का मजहर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये एजाज दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों को भी बाहमी दोस्ती और खसूसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की तरगीब देगा और इस दोस्ती को आइंदा भी फरोग देता रहेगा। भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। ब्रेटिसलावा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के बाद फरीकैन ने अहम शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल है। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ताल्लुकात का फरोग मुश्तरका अकायद, तरजीहात और मुस्तकबिल की अलामत है।
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा

0: देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबों में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इकतसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमाया तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनू जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्को है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वजीर आजम मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाजाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकत दारियों का क्याम और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़र नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीस, आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वजीर आजम मोदी की कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, बरतानिया के वजीर आजम कियर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्की हैं। इसके बाद वजीर आजम फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की दावत पर फ्रांस के उस शहर का दौरा कर रहे हैं, जिसे एक नहायत अहम, नतीजा खेज और हमाजह दौरा करार दिया जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये भारत की 13वीं शिरकत होगी, जबकि वजीर आजम मोदी मुसलसल 7वीं मरतबा इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत की मुसलसल शिरकत आलमी उमूर में मुल्क के बढ़ते हुए रोल और अहमियत की अक्कासी करती है। यह आलमी सतह पर अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती पायदारी से मुतालिक चैलेंजों से निमटने में भारत के रोल और खिदमात के एतराफ की अक्कासी भी करती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: G7 मुल्कों के लिए भारत की स्ट्रेटजिक अहमियत अब ठोस इक्तसादी और तकनीकी शराकत दारियों की सूरत में मजीद नुमाया हो रही है। इसका सबूत हाल ही में तय पाने वाला भारत यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदा है, जबकि नीस में मुनक़िदा भारत इनोवेट्स प्रोग्राम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत का सरकारी AI पार्टनर मुल्क के तौर पर इंतखाब भी इसी सिलसिले की अहम मिसालें हैं। ये पेशरफ जाहिर करती है कि G7 ममालिक भारत को सिर्फ एक बड़ी मंडी के तौर पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, अख्तरा, मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सप्लाई चेन्स के शोबों में एक काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर भी देख रहे हैं। अहम बात यह है कि फ्रांस की G7 सदारत की जानिब से तय की गई मुतअद्दिद तरजीहात, जिनमें आलमी अदम तवाजुन को कम करना, बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों का फरोग और मसनू जहानत AI शामिल हैं, भारत की सलाहियतों और मफादात से करीबी मुताबकत रखती हैं। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास

0: सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले साल 6 और 7 मई के दरमियानी रात शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाजे पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, अलबत्ता वो दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने एक नई सुर्ख लकीर खींच दी कि अगर दहशतगर्दी को हुकूमत की पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका बराह रास्त और सख्त जवाब दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। 9 और 10 मई को भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने एक ही ऑपरेशन में एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क के 11 फजाई अड्डों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान फजाइया के तकरीबन 20% बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन के बाद आलमी सतह पर भारत को वसी हिमायत हासिल हुई और मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने भारत के मौकिफ की तायीद की। ये भारत की बढ़ती हुई आलमी साख और बैन अल-अक़वामी बयाने पर उसकी मजबूत गिरफ्त की अक्कासी करता है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लन, जो जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर साबित कदम है और इस पर पूरी संजीदगी और अज़्म के साथ अमल पैरा है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मा।
0: हुकूमत ने अपने ताजा तरीन 15 रोजा जायजे में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की बरामद पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आज से नाफिजुलअमल डीजल बरामदी ड्यूटी 13.05 रुपये फी लीटर से 14 रुपये फी लीटर कर दी गई है, जबकि ATF की बरामद पर महसूल 9.05 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर बरामदी ड्यूटी 1.05 रुपये फी लीटर पर बरकरार है। घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटियों की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रकीक कुदरती गैस LNG लाने वाला जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। LNG बरदार ये जहाज 62,370 मैट्रिक टन LNG लेकर आ रहा है। इस जहाज का इंतजाम शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की क्यादत में कायम एक कंसोर्शियम कर रहा है। ये इन अव्वलीन तजारती जहाजों में शामिल है जहां अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी माहदे के ऐलान के बाद आबनाए हुरमुज को पार किया है। जनूबी कैलिफोर्निया के सहराए मोहावी में अमरीकी फिजाइया के फौजी अड्डे से परवाज होने के फौरन बाद एक B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें सवार सभी 8 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतला दी कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर तैयारा गिरने के बाद हंगामी टीमें जाए वकूफ पर पहुंची। फिजाई फुटेज में बेस के रनवे के करीब सेहरा से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साल गोलकीपर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इससे पहले ग्रुप जी के इफ्तिताही मैच में बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी तरह आज सुबह अमरीका के मियामी स्टेडियम में ग्रुप एच के मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच भी 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
4: शुक्रिया फैजल। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے

नमस्कार दोस्तों, मधुरिमा के इस सुरीले सफर में आज आपकी हम सफर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव। आप सभी का कार्यक्रम मधुरिमा में स्वागत है। आज है 16 जून और आज हिंदी सिनेमा के दो ऐसे सितारों का जन्मदिन है जिनमें एक की आवाज में समंदर जैसी गहराई और संगीत में मिट्टी की खुशबू है, तो दूसरा सितारा है हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता जिसने अपने अभिनय और डांसिंग स्टाइल से लोगों को सम्मोहित किया। तो आज है जन्मदिन संगीतकार एवं गायक हेमंत कुमार और फिल्म इंडस्ट्री के जिमी यानी मिथुन चक्रवर्ती यानी मिथुन दा का। पहले बातें हेमंत कुमार के बारे में।

हेमंत कुमार के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी में ही बंगाली टोला इलाके में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका पैतृक परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के परगना जिले में निवास करता था। उनके जन्म के कुछ समय बाद उनका परिवार कोलकाता आ गया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। हेमंत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन संगीत उनका पहला प्यार था। चलिए सुनते हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में फिल्म पतिता का ये गाना।

हेमंत कुमार ने अपना पहला गाना सन 1930 में रिकॉर्ड किया, लेकिन हेमंत कुमार का असली जादू तब सामने आया जब उन्होंने संगीत देना शुरू किया। फिल्म अनारकली, नागिन, जागृति, एक ही रास्ता, 20 साल बाद आदि फिल्मों में उनके संगीत ने उन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ अपने संगीत में ही नहीं गाया, बल्कि SD वर्मन, सलिल चौधरी और कल्याण जी, आनंद जी जैसे संगीतकारों के लिए भी यादगार गाने गाए। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। उनकी फिल्म 20 साल बाद और खामोशी के गाने आज भी लोगों की जबान पर हैं। फिल्म नागिन के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला। 26 सितंबर 1989 को संगीत के सितारे ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके गीत आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं।

मधुरिमा में अब बातें दूसरे लीजेंड यानी मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती उर्फ गौरांग चक्रवर्ती का जन्म कोलकाता के एक साधारण परिवार में 1950 में हुआ था। कोलकाता से बीएससी करने के बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग की बारीकियां सीखी। इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी राह आसान नहीं थी। साल 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृगया के लिए, जो उनकी पहली फिल्म थी, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला, लेकिन फिर भी वो नोटिस नहीं किए गए। और फिर 1982 में आई डिस्को डांसर ने उन्हें सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया।

डिस्को डांसर के बाद मिथुन दा 80 और 90 के दशक के दौर में बच्चे बच्चे के फेवरेट एक्शन हीरो बन गए। अग्निपथ में कृष्णा अय्यर एमए के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। मिथुन दा ने लगभग 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा बंगाली, भोजपुरी, उड़िया और तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया। मिथुन दा को उनके बेमिसाल योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से भी नवाजा गया।

आज 16 जून को संगीतकार एवं गायक हेमंत कुमार को याद उनके जन्मदिवस पर याद करते हुए उन्हें शत शत नमन, और अभिनेता और डांसिंग स्टार मिथुन दा को आकाशवाणी वाराणसी की तरफ से जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेरठ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने छावनी क्षेत्र के माल रोड पर 150 पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण अभियान में छावनी परिषद की संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी हर्षिता चमाड़िया ने छावनी परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण किया और बताया कि छावनी परिषद द्वारा छावनी क्षेत्र में 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने 1001 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके तहत अभी 150 पौधे लगाए गए हैं, जबकि 500 पौधे कैंट क्षेत्र में लगाए जाएंगे। इस स्थान को उपवन नाम दिया जाएगा। इसकी देखरेख के लिए एक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा बचे हुए पौधे कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे, जिन्हें वे अपने आसपास घर, मंदिर या पार्क में लगाकर उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि माल रोड उनके बचपन में ठंडी सड़क के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ घने पेड़ हुआ करते थे। समय के साथ सड़क के एक हिस्से से पेड़ कम हो गए, इसलिए कैंटोनमेंट बोर्ड के सहयोग से यहाँ फिर से हरियाली बढ़ाने की पहल की जा रही है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय पहुँचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हॉर्टिकल्चर ब्लॉक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब का निरीक्षण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने भाजपा सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देश की जनता यह जान चुकी है कि उसका हित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार यूरिया के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी निगरानी लगातार की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय और कृषि सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान, नई तकनीक और किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा सरकार इसके विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ स्थित अटल सभागार में वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप 10 में अपना स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सोमेंद्र तोमर, लोकसभा सांसद अरुण गोविल, जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल द्वारा जनपद के 19 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र मेडल के साथ 21,000 रूपए की धनराशि का चेक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। हाई स्कूल में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने

0: वाली छात्रा अबीदा, इंटरमीडियम में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा वंशिका उपाध्याय समेत 19 मेधावियों को सम्मानित किया गया। मेरठ में 119 किलोमीटर की सफाई अब आधुनिक मशीनों से होगी। इस योजना का मेरठ के सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस योजना के तहत सफाई पर एक महीने में करीब 1,23,00,000 रुपए खर्च होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी को सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में मुख्य मार्गों की सफाई करनी होगी, जिनकी लंबाई 119 किलोमीटर बैठती है। सांसद अरुण गोविल का कहना है कि उनकी कोशिश है मेरठ को इंदौर की तर्ज पर नंबर वन बनाना, जबकि महापौर हरिकांत आहलूवालिया का कहना है कि इंदौर और सूरत की तर्ज पर मेरठ की सफाई व्यवस्था करने की हर कोशिश की जा रही है और ये उसी का एक बड़ा प्रयास है। मेरठ में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने सर्किट हाउस में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं से संवाद कर उन्हें केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विकास भवन सभागार में महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित मामलों की जन सुनवाई की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने लाभार्थी महिलाओं से संवाद के माध्यम से योजनाओं की सफलता की कहानी सुनी और महिलाओं को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने बताया,
1: एम्पावर्ड जो महिलाएं हैं जिन्होंने योजनाओं के साथ चलते हुए खुद को बहुत अच्छे तरीके से समर्थ बनाया है, काम करने के बाद के जीवन में क्या बदलाव आया है और ये बदलाव मुझे बहुत पॉजिटिव लगा है। महिलाओं का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, घर में उनकी निर्णय प्रक्रिया में की सहभागिता बढ़ी है, समाज में भी अभी आज उनको सम्मान मिल रहा है, ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है।
2: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
3: शामली जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और तस्करी रोकने के लिए अब हर गाड़ी पर जीपीएस का पहरा रहेगा। केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के वाहन स्थान ट्रैकिंग सिस्टम VLTS के तहत बिना सुरक्षित OTP के यूरिया की अनलोडिंग मुमकिन नहीं होगी। शामली में इस हाईटेक व्यवस्था का सफल ट्रायल कर इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत रैक पॉइंट से बफर गोदामों और सहकारी समितियों तक खाद ले जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में GPS अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी लाइव मॉनिटरिंग कंपनियों के मुख्यालय समेत जिला कृषि अधिकारी करेंगे। यदि कोई वाहन तय रूट से भटकता है तो तुरंत अलर्ट जनरेट हो जाएगा। हाल ही में KFL कंपनी की 1068 मीट्रिक टन यूरिया इसी तकनीक से सुरक्षित पहुंचाई गई। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
4: रैक पॉइंट से जाने वाले सभी ट्रक GPS OTP वेस्ट माध्यम से भेजे जा रहे हैं और जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं उस स्थान पर OTP डालने के बाद ही उतरने की व्यवस्था कराई गई है तथा वाहन जो उर्वरक लेकर जा रहे हैं उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग कराई जा सके।
3: शामली जिले में मानसून की आहट के साथ ही जिले में खरीफ सीजन 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस बार 22,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा है। इसमें अकेले 18,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए प्रमाणित बीजों पर 50% तक का अनुदान और पात्रता के अनुसार निःशुल्क मिनी किट देने की घोषणा की है। इसके लिए विभागीय एग्री दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि सभी विकास खंडों के गोदामों पर धान, उड़द, मूंग और मोटे अनाजों का पर्याप्त स्टॉक पहुंचा दिया गया है। 15 जून से मुख्य बुआई शुरू होने की संभावना को देखते हुए किसान खेतों को तैयार करने और धान की पौध लगाने में जुट गए हैं। विभाग ने किसानों से जल्द बुकिंग कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। शामली जिले में यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग से उपजाऊ मिट्टी बंजर होने के कगार पर है, जिससे कैंसर और ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गिरती सेहत और बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने जून माह में विशेष खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, ताकि किसानों को जहर मुक्त और संतुलित खेती के प्रति जागरूक किया जा सके। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि जिले में खाद की किल्लत नहीं है बल्कि अति प्रयोग समस्या है, जिसे सुधारने के लिए सरकार जहर मुक्त और जागरूक खेती पर दे रही है। शामली में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए सरकार 20,000 की आर्थिक सहायता देगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर लाभ दिया जाएगा। हालांकि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हुई महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन

0: आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर जाकर जन सेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र या निजी इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित उपजिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। शामली जिले के उपभोक्ताओं और किसानों को जल्द ही लो वोल्टेज अघोषित कटौती से मुक्ति मिलेगी। ऊर्जा निगम ने क्षेत्र के 6 प्रमुख बिजली उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए 12 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत टिटोली, बनत, जलालाबाद, थाना भवन टाउन, कमालपुर और देवी मंदिर कैराना विद्युत उपकेंद्रों का क्षमता विस्तार कर नवीन पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने बताया, टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू होगा, जिससे गर्मियों में ओवरलोड और ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। शामली जिले को वेस्ट यूपी का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कांधला में मिनी उद्योग क्षेत्र की स्थापना के तहत 11 भूखंडों और 1 सेट के आवंटन की इन नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्योग निदेशालय की इस बड़ी पहल से जिले में भारी निवेश आएगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। कांधला बुढ़ाना मार्ग पर स्थित इस उद्योग क्षेत्र में भूखंडों को 99 वर्ष की लीज पर विनिर्माण इकाइयों को आवंटित किया जा रहा है। कांधला और कैराना के बीच बन रहा पीएसी कैंप उद्यमियों को मजबूत सुरक्षा कवच देगा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पारदर्शी ई ऑक्शन से होने वाला यह है काश जिले के राजस्व और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना शिवपुर सहायक पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अनामिका सिंह, पुत्री स्वर्गीय राणा विजय शंकर सिंह, प्लॉट नंबर 3 राजेश्वरी नगर कॉलोनी गिलट बाजार शिवपुर वाराणसी की निवासी हैं। अनामिका सिंह की उम्र 46 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 28 दिसंबर 2025 सुबह 9 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने सलवार सूट पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को सूचित करें। थाना शिवपुर सहायक पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार रामजतन प्रजापति, पुत्र खुमन राम प्रजापति, मोहल्ला कादीपुर, थाना शिवपुर जनपद वाराणसी के निवासी हैं। रामजतन की उम्र 60 वर्ष, लंबाई 152 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 17 जनवरी 2026 से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने धारीदार क्रीम रंग की शर्ट, गुलाबी स्वेटर एवं हरे रंग की लुंगी पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को सूचित करें। थाना जिगना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार रंजना देवी, पुत्री राम प्रकाश यादव, ग्राम छतरीपुर, थाना जिगना जनपद मिर्जापुर की निवासी हैं। रंजना देवी की उम्र 23 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 9 मई 2026 से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने गुलाबी रंग का सूट, काला दुपट्टा,

एवं काले रंग की चप्पल पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना जिगना जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। खोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: साल तक अपने नाम को इस कुर्बानी से इस तरह जिंदा रखा है और आज भी हम ही नहीं गैर कौम हिंदू धर्म यहाँ तक के अंग्रेजों तक ने उनकी इसके लिए तारीफ की है। हक के लिए जान देने की जो रस्म चली है, अगर उस रस्म का किसी को बानी माना जाए तो वो हुसैन इब्ने अली है। यहाँ मैं अपने साथी जनाब मौलाना मुबीन साहब से पूछना चाहूंगी इसके बारे में कि वो अपने कुछ मतलब अपने बयान है वो कुछ बताएं इस टॉपिक के बारे में और रोशनी डालें।
1: हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पैगाम इंसानियत। यकीनन हजरत इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को वो इंसानियत, शराफत, अखलाक और किरदार का पैगाम दिया है कि ना अभी तक कोई वो पैगाम दे सकता है और ना किसी में इतनी जुर्रत है। इसलिए कि आप अपने नाना रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर थे।
0: बेशक
1: जिस तरह आपने अपने अखलाक के, अपने किरदार के जरिए से इस्लाम पर आमादा किया लोगों को, और आपका जब पैगाम सुना तो आपके अखलाक की बुनियाद पर लोग आपके किरदार को अपनाने के लिए मजबूर हो गए। आपकी राहों में कांटे बिछाए जाते थे, आपको जुल्म व सितम का सामना करना पड़ता था।
0: बिल्कुल,
1: हत्ता के एक औरत का मशहूर वाकया है कि आप पर वो कूड़ा डाला करती थी
0: जी,
1: और एक रोज जब नहीं आई तो आपने मालूम किया कि वो कहाँ है। बताया गया कि वो आज बीमार है, अलील है। कहा अच्छा, तो आप उसके दरवाजे पर गए और कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तू बीमार है, इसलिए मैं तेरी अयादत करने के लिए आया हूँ। और वो समझ रही थी कि आप मुझसे इंतकाम लेने आए हैं। आपने कहा कि नहीं, मेरे मजहब में है कि अगर कोई बीमार हो, अलील हो, तो उसकी अयादत करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। पर इतना सुनना था, वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जब मैं इतना इन पे जुल्म सितम करती हूँ तो ये इतने मेहरबान हैं, अगर मैं इनसे मोहब्बत करने लगूंगी तो ये मुझ पर कितने मेहरबान होंगे। इसी बुनियाद पर उसने कलमा पढ़ लिया और वो आपके ताबो फरमा बरदार हो गई। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। इसी तरह हजरत इमाम हुसैन का किरदार बिल्कुल अपने नाना जैसा था कि आप जब मदीने से करबला की तरफ जा रहे थे, आपके पास बेपनाह पानी का इंतजाम था। यजीदी लश्कर जिसमें हुर सिपे सालार था, उसका 1000 का लश्कर था जो प्यासा था। आपने सब पूरे लश्कर को पानी पिलाया, हत्ता के उनके जानवरों को भी सैराब कर दिया। जबकि ये मालूम था कि हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, मगर इमाम हुसैन ने कहा कि हम प्यासे रहें तो रह जाएं, हमारे बच्चे प्यासे रहें तो रह सकते हैं, लेकिन हम किसी को प्यासा नहीं देख सकते हैं, हम दुश्मन की भी प्यास गवारा नहीं कर सकते हैं। और यही आपका हुस्ने अखलाक था जिसको देखकर खुद हुर आपकी तरफ पलट आए और आपके कदमों पे सर रखकर बता दिया कि देखो, जो इस किरदार का मालिक होता है वो इस लायक है कि उसके कदमों पे अपने सर को रख दिया जाए। तो ये हजरत इमाम हुसैन का अखलाक और किरदार था। वही किरदार आपके बाबा मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब का था कि जब आपसे जंग हुई और दुश्मन ने पानी पे कब्जा कर लिया तो आपका लश्कर प्यास से जाबलब होने लगा, मगर जब हिम्मत की कोशिश की तो आपके लश्कर ने पानी पे कब्जा कर लिया। जो दुश्मन था वो परेशान है कि अब क्या होगा, हमें प्यासा रहना पड़ जाएगा। तो उनका जो सिपे सालार था उसने कहा कि देखो, अली एक शरीफ आदमी है, तुमने उनका पानी बंद कर दिया है, लेकिन ये तुम्हारा पानी बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि ये शरीफ हैं, ये साहिब अखलाक और किरदार हैं। और वही हुआ, फिर मौलाए कायनात ने आम इजाजत दे दी कि देखो, इन्होंने पानी बंद किया था, ये उनका काम था, मगर हम अल्लाह की आम नेमत को किसी बंदे पर रोक नहीं लगा सकते हैं, लिहाजा मौलाए कायनात ने उनको आम इजाजत दे दी कि ये जिसका जी चाहे वो पानी पिए। تو یہ ان کا کردار رہا ہے۔

0: कि दुश्मन जुल्म व ज्यादती करे लेकिन इनकी तरफ से किसी तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि दुश्मनों के भी काम आए हैं और हर एक को इन्होंने अपने अखलाक और किरदार के जरिए से अपने दीन पर लाने की कोशिश की है। और यही मौला हुसैन हैं कि जिन्होंने आते ही आते फितरस को बालों पर अता किए हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि अभी जमीन पर पहला कदम हुसैन का है, निजात पा गया फितरस करम हुसैन का है। तो इन्होंने आते ही फितरस को बालों पर अता किए हैं, राहिब को सात बेटे अता किए हैं, जनाबे हुर को लम्हों में जन्नती बना दिया और किरदार इमाम हुसैन आवाज दे रहा है कि देखो जो हमारे किरदार से मिलता चला जाएगा इसी तरह हुर की तरह अपनी किस्मत को संवारता चला जाएगा। तो हम सबको चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलें ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखरत भी कामयाब हो जाए। अब हमारे साथ आली जनाब सरवत हुसैन जैदी साहब हैं, वो इस सिलसिले में इजहार ख्याल आपके सामने पेश करेंगे।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की है वो दुनिया में कोई कुर्बानी पेश नहीं कर सकता। उन्होंने इंसानियत को और जो रहने का तरीक़ा है और जो बोलने का तरीक़ा है, एक दूसरे कैसे बोलोगे, एक दूसरे की कैसी खिदमत करोगे, ये सब उन्होंने बताया है। हमें उनके नक्श कदम पर चलने की अल्लाह तौफीक अता करे। और जो हमारे सामीन वो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें और जो उन्होंने हुक्म दिए हैं और हमको बताया है उस पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने ऐसा पैगाम दिया है कि इंसान को पैदा तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, ये उन्होंने पैगाम दिया है। और इसके अलावा बहुत से उन्होंने पैगाम दिए जो कि हमें सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत ही उसकी इनकी ज़रूरत है। उन्होंने पैगाम दिया है कि हर बच्चे को इल्म की तरफ तवज्जो दी जाए। जब इल्म आ जाएगा किसी मजहब के मिल्लत के हो तो उस पर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या पैगाम दिया है, हमें क्या हमसे उम्मीदें रखी हैं उन्होंने, और दीन मोहम्मद को उन्होंने किस तरह से कायम किया है। अल्लाह सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। उन्होंने नमाज ही पढ़ के दिखाई लोगों को, जो हमारी एक बुनियादी हिस्सा है। इस जंग के मैदान में ऐसे माहौल में जो उनके साथी लोग थे उन्होंने नमाज अदा करी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दिल से दुआएं करी हैं। और आखिर में उन्होंने जिस वक्त वो शहीद हो रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा, हल में नासिर सुना, मैं कोई भी मेरा साथी नहीं है और मेरी मदद को आए। लोग आमादा हुए उनकी मदद के लिए और उनके साथियों ने कुर्बानी पेश करी और उस कुर्बानी का नतीजा ये हुआ कि आज तक हम उस कुर्बानी को याद करते हैं। हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मजहब मिल्लत के लोग उनको इज्जत के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से उनके प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, उसमें वो अपने शानदारी जल्द पैदा करते हैं। उन्होंने हमको ये भी सबक दिया है, इखलाक दिया है और तालीम कुरान भी उन्होंने कहा है जो बहुत ज़रूरी है। दीन मोहम्मदी को कायम रखने के लिए हमें कुरान पढ़ना ज़रूरी है। ये कुरान एक हमारी जैसे हिंदुस्तान के कानून की किताब है, ऐसी कानून की किताब है। इसमें पढ़िए और इसमें सब बातें लिखी हैं, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं है कुरान शरीफ में जो कि इमाम हुसैन सलाम ने नहीं बताया है। और जो इसमें सर ने लिया है वो इमाम हुसैन सलाम ने अपनी शहादत दे के बताया है कि हक और बातिल क्या है। ये चीज उन्होंने ये बताई है कि हक बातिल क्या है, और अगर कोई जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ भी कैसे, और जो जुल्म सह रहा है उसके बारे में बताया कि इमाम हुसैन सलाम ने के ऊपर इतने इतने जुल्म पड़े हैं कि अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ी जाए और उसको बयान किया जाए तो वो कोई ऐसा है शख्स नहीं है जो जिसके दिल पे असर ना हो और आंसू ना निकलने लगे। बस मैं इमाम हुसैन सलाम के और भी बहुत से वाकयात हैं जिन्होंने एक नन्हे से मुजाहिद को अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया, सिर्फ नाना के दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दी, वैसे वो यजीद के साथ भी रह सकते थे।

0: उसके भी कहना मान लेते तो बैत कर लेते, लेकिन इमाम हुसैन साहब ने इनकार करा और उन्होंने यही कहा कि नाना के दीन को बचाना है, इसीलिए कहा एक बार कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो हुसैन मुझसे तो समझ आ रहा था, हमारे जितने भी लोग बताते हैं इमाम हुसैन सलाम मुझसे है, लेकिन ये कि मैं हुसैन मुझसे है ये समझ में नहीं आ रही थी बात। लेकिन करबला के वाकयात के बाद ये यकीन से कह रहा हूँ मैं कि ये तय हो गया कि इमाम हुसैन सलाम, इमाम हुसैन सलाम के दीन के जरिए रसूलुल्लाह का दीन बचा है। अगर इमाम हुसैन नहीं होते तो रसूलुल्लाह का दीन आज तक हम पर नहीं आता और हम लोग ना जाने किस तरह होते, अपने अपने रंग में होते। ये हुसैन की बड़ी कुर्बानी का असर है हमारे ऊपर कि हमने उसको इस तरीके से उन्होंने हम कुर्बानी दी और उस हमें चलने की तौफीक अता फरमाई।
1: जी हमारे सलाम उन पे तहे तेग भी जिन्होंने कहा जो तेरा हुक्म जो तेरी रजा जो तू चाहे। इमाम हुसैन का जो वाकया था 1400 साल पहले, वो हमारे पास कोई कैमरा नहीं था उस वक्त, खुदा बेहतर जानता है कि जुल्म की क्या इंतहा थी जिसमें उन्होंने सब्र और इंसानियत को कायम करके अपना नाम आज तक के लिए कायम और जिंदा रखा। यहाँ पर मुझे एक जनाब इमाम हुसैन के बचपन का भी वाकया याद आता है कि रसूल अल्लाह से उनसे 6 साल तक रसूल के जेर साया वो पले बढ़े। तो एक बार जब वो कह रहे थे किसी को देख के कि वजू गलत है, तो वजू ये नहीं उन्होंने कहा कि वजू गलत है, बल्कि बैठ के उनको अपनी वजू करके दिखाई ताकि वो खुद ब खुद समझ जाए। मतलब ये कि डायरेक्ट किसी को नहीं कहो कि क्या गलत है क्या सही, इतनी बारीक सी बात के ऊपर उन्होंने इतना जोर दिया, और कि इनडायरेक्ट वे में समझा दो और बात चली जाए, किसी का दिल ना दुखाओ। इसका मकसद यह है कि किसी का दिल ना दुखाओ। जिस इंसान को किसी के दिल ना दुखाने का भी इतना फिक्र हो, वो आप सोचिए कि उसका इंसानियत का मैयार किस दर्जा बुलंद होगा। और इमाम हुसैन ने ही नहीं बल्कि बाद में जनाब जैनब को ये ताकीद की उन्होंने कि आप जो है वो बददुआ ना करना, कितने भी जुल्म और सितम हो गए लेकिन आप बददुआ ना करना। जुल्म और सितम की हद ये हुई कि 2 साल तक जो है वो कैद रहे, दर बदर दर कूफा और शाम में वो घूमे फिरे, इतना कि जंजीरें जो थी वो गोश्त में पेवस्त हो गई, लेकिन सिवाय सब्र और शुक्र के उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन का ही दिल था जो इस दर्जा बुलंदी को फायज होता है। और आगे की बात के लिए मैं मौलाना से चाहूंगी कि वो अपने इजहार ख्याल करें।
2: जी, जैसा कि ये सिलसिला चल रहा है इमाम हुसैन के सिलसिले में, इमाम हुसैन और पैगाम इंसानियत, ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। सरदार नदार दस्त दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। के हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं और दीन को पनाह देने वाले भी हैं। यकीनन जो इस्लाम पैगंबर इस्लाम लेकर आए थे उसको बचाने वाले हजरत इमाम हुसैन हैं। अगर इमाम हुसैन ना होते तो दीन मिट गया होता, यजीद ने बिल्कुल इसके नामो निशान को मिटा दिया होता, मगर इमाम हुसैन ने कहा कि हम खुद मिट जाएंगे, अपने खानदान को कुर्बान कर देंगे लेकिन इस्लाम को बचा कर रहेंगे और कयामत तक इस्लाम बचा रहेगा। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। बस इसी पर हम अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हैं। अल्लाह हम सबको हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
3: कभी हर्फ तड़पता है, कभी लफ्ज दहकता है, कभी अश्क बहते हैं, कभी दिल धड़कता है, कभी सच्चाई लहू मांगती है और कभी हक परचम लहराता है। आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र कर रहे थे, समिन वो रोशनी नहीं रहनुमाई है, वो कोई शोला नहीं शऊर है, बल्कि दीन की बका का रोशन आफ्ताब है। वो चिराग हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों, जो न सिर्फ नवासे रसूल हैं बल्कि दीन हक के इमाम हैं, सब्र के सुल्तान हैं और कुर्बानी के उनवान हैं। सलाम उन पे तहे तैक भी जिन्होंने कहा, सलाम उन पे तहे तैक भी जिन्होंने कहा,

अभी आपने सुना रामनाथ और साथी के स्वर में पचरा। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए इन्हीं के स्वर में दादरा।

रामनाथ और साथी के गाए दादरा के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गाना। इस गाने को लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है एसडी वर्मन ने।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गाली या हजार दे,
1: अरे मस्तराम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: ठीक है दांत लीक करूँ तो मुझको जेल भेज दो,

अब सुनिए फिल्म लव मैरिज से ये गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

जैसे परी, ये सुबह मस्ती भरी, यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद याद आ गए हम।

0: अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त लता मंगेशकर की आवाज़ों में गूंज उठी शहनाई फिल्म से ये गाना। शब्द रचना थी भरत व्यास की और धुन बनाई थी बसंत देसाई ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये गाना। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

झंकार में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में चोरी चोरी फिल्म का ये गीत, बोल हैं हसरत जयपुरी के और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

झंकार में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म आर पार से। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में अब हम आपको सुनवा रहे हैं तीसरी कसम फिल्म का गाना। इस गाने को गाया है आशा भोसले ने, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: आप सुनिए सी रामचंद्र और शमशाद बेगम की आवाज़ों में पतंगा फिल्म से ये गाना। गीतकार हैं राजेंद्र किशन और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना नौजवान नौजवान फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत था उजाला फिल्म का ये गाना। गीतकार हैं हसरत जौनपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेरे घर के सामने से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना है हसरत जयपुरी की और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

झंकार का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हकीकत फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी, भूपेंद्र सिंह, तलत महमूद और मन्ना डे ने। गीतकार हैं कैफ़ी आज़मी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो हमसफर अंजना झा के साथ। आज का फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है। हम आपको बताएंगे फिल्मों के नाम जिनके गीत आज हमने चुने हैं आपको सुनवाने के लिए। उन्हीं फिल्मों के गीत सुनने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना है। कार्यक्रम के नियम तो आप जानते ही हैं, फिर भी हम आपसे एक अनुरोध करें गीत को सुनवाने से पहले कि जिन फिल्मों के नाम हम आपको बताएंगे उनके गीत के लिए आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे और एक श्रोता अपनी पसंद के केवल एक ही गीत के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे। आज के कार्यक्रम में आप अपने संदेश हमें रिपीट ना करें और कोशिश करें कि एक संदेश में 4 या 5 नाम ही आप मेंशन करें। प्रॉपर स्पेस के साथ अपना नाम और जगह का नाम हमें भेजें ताकि हम उसे सही तरीके से पढ़ सकें। और श्रोताओं, एक बार में बहुत सारे संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आपने जिस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है उस गीत में हम आपका नाम शामिल नहीं कर पाते, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि आज के इस कार्यक्रम में आपका नाम ज़रूर शामिल हो। और इसके लिए करना क्या होगा, आपको इस कार्यक्रम में अभी से लेकर 12 बजे तक बने रहना होगा, सुनना होगा हमारे साथ कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। तो चलिए बता दें आपको फिल्मों के नाम। हमारी आज की फिल्में हैं दर्द, चोर मचाए शोर, बदलते रिश्ते, प्रेम गीत और तेरी कसम। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, दर्द, चोर मचाए शोर, बदलते रिश्ते, प्रेम गीत और तेरी कसम। पहला गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले ही बहुत सारे संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम शुरू कर लेते हैं उन्हें पढ़ने का सिलसिला। ये पहला संदेश है मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह और सीटी दीवाना। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। और ये संदेश है आशीष कुमार महरेव, जौनपुर से। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और उनके परिवार के सभी सदस्य। संदेश आया नलेश्वर नगर नलवेड़ महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर, निर्मला, विशाल नोहानकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफताब अंसारी, मेहताब अंसारी।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था दर्द। और इस गीत के बाद जो अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे उस फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। और बहुत सारे संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, श्रोताओं के नाम पढ़ते हैं। अब ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य। संदेश आया टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी का। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये संदेश है दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। रमाशंकर यादव रासीपुर बहादुरपुर सिरकोनी से। मोसी अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी वाराणसी से ये संदेश है। और अगला संदेश गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मोराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल, अजीता कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से, संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा, दतरेंगी छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल। अगला संदेश आया कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले और इनके मित्रगण। अगला संदेश है जमालपुर गोगरी खगड़िया बिहार से सिकंदर कुमार, ताती यदुनंदन ताती, सुजीत कुमार, सौरभ कुमार और पूजा देवी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश और हर्ष कुमार का संदेश है ये। ये संदेश आया ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल। ग्राम नागर कोहरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया और अल कबीर का ये व्हाट्सएप संदेश। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा, आर अश्विन, शानू।

शोभनाथ अवस्थी और इनके दोस्त रंजीत गुप्ता, रत्नेश गुप्ता, शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से। पाकुर झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोहरागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये पसंद आई है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। मेहर अरोड़ा ममता, कीर्ति और भूमिका का संदेश गंगानगर राजस्थान से। ग्राम चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहनी। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, सकीना और हसीना दिलशाद, और यहीं से एक नाम और है वसीम फातमा का। ग्राम फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और यहीं से सौरव डूडी और प्रमोद कुमार का भी नाम। गांधी चौक बारमेड़ राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल। श्रोताओं, आपसे फिर से अनुरोध कर रहे हैं, कृपया रिपीट संदेश न भेजें। अगर आपका नाम शामिल हो चुका है या अभी नहीं भी हुआ है, आपने संदेश हम तक पहुंचा दिया है, तो हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। ये संदेश आया बजरडीहा वाराणसी से। ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद अंसारी और बदरुद्दीन अंसारी का। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और उज्जवल दास। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जालंधर पंजाब से। अगली फरमाइश धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह और संकल्प की है। गुरजीत सिंह नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आपने संदेश भेजा है। और अगला संदेश है मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान, फरहान, समायरा, आजमीन, गुड़िया का, तेलंगाना भोंगीर से। श्री गोपाल गिरी, रमेश गिरी, इंदु गिरी, विशाल गिरी ग्राम पंचायत गाजीपुर से आपका संदेश है। और अगला संदेश आया है मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया, शाहीन और नाजिया नूरी नाज का, सीतामढ़ी बिहार से। महसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, ज्योति ठाकुर का संदेश आया ग्राम चरौदा नवापारा छत्तीसगढ़ से। ये संदेश है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशूल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन का। वारंगल से मोहम्मद खाजा रिजवान, मोहम्मद खाजा फजीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया। कोलगांव से पांडू चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग का ये संदेश। और गीत के पहले ये संदेश शामिल कर रहे हैं जमशेदपुर झारखंड से सुपाही साही गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेंद्र जी। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं चोर मचाए शोर फिल्म का गीत, और उसके बाद जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उस फिल्म का नाम बदलते रिश्ते।

एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना।

सलीम जावेद और शाहिद हसन आजमी। संदेश आया बेरड़ी से अर्जुन गवनेकर, धीरज और चंचल ढोमने का। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेवी गर्वी, जोधपुर राजस्थान से। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह का ये व्हाट्सएप संदेश। संदेश शामिल कर रहे हैं हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया रानी का नवली गाजीपुर से, कोटवा कपिलधारा, सराय मोहाना, वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, एन्द्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और निर्मला त्रिपाठी। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा का ये संदेश। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू का संदेश कार्यक्रम में शामिल हुआ। और अगला संदेश है मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा का संदेश। ग्राम पजौनिया जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि सिंदे और कृष्णा घोड़के का ये संदेश शामिल हो रहा है कार्यक्रम में। और ये हमारे श्रोता हैं दिलदार नगर ग्राम पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम। और ये संदेश आया है ग्राम बहुवरा पोस्ट दिलदार नगर गाजीपुर से अक्लू राम, केदार राम, दीनानाथ सिंह, श्री किशुन सिंह कुशवाहा, छविनाथ शर्मा। दिलदार नगर ग्राम से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह और कयूम शाह। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। रायपुर से इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल, पिंकी जायसवाल। शुदा हूँ आपको सुनवाने वाले हैं बदलते रिश्ते फिल्म का गीत। और इस गीत के पहले कुछ संदेश और शामिल कर लेते हैं। सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग, सुरेश नारंग। तालुका नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू, चंद्रकला और देवीदास का ये संदेश है। और अगला संदेश आया है राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। कोलकाता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और पीहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका, रिया जिया, तुषी, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी, जयप्रकाश साव, वसंतलाल साव, हीरामोती और पन्ना साव का संदेश है। और चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और इनके परिवार के सभी सदस्य। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, अंशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल का ये संदेश। और चकदाऊद सिखड़ी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से साहब चौहान, रीमा चौहान, वैष्णवी चौहान, वैभव चौहान, अयांश चौहान और इनके मित्रगण। और गीत से पहले ये संदेश डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और अब सुनिए ये गीत, फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम बदलते रिश्ते और इसके बाद प्रेम गीत फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएंगे। बहुत सारे संदेश श्रोताओं के कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, जल्दी जल्दी नाम पढ़ते हैं इनके। ये पसंद है संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, चौखुंटी हाथी बाजार वाराणसी से। और अगला फरमाइशी संदेश एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान का संदेश। लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ। ये संदेश आया है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत का। कोरासी रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता और दीपिका साहू का संदेश। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से नानाजी लामसे, मीना लामसे, तेजस जय लामसे, हर्षिता लामसे का। और ये अगला संदेश व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का संदेश। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, अक्षय और शुभम। मुबारकपुर पुरानी बस्ती से शाहिद जमाल, अनवर, आसिफ और दानिश का ये संदेश। और यहीं से सहजीव अनवर संदेश शामिल कर रहे हैं। ग्राम बहुआरा पोस्ट दिलदार नगर गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह का। परवेज अहमद शुक्लपुरा वाराणसी से आपने संदेश भेजा है। रजत कार्तिक और शांति देवी का संदेश है शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से। और यहीं से एक नाम और है तारा देवी। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल। गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी का संदेश। अगला संदेश धर्मेश मौर्य, अंचला मौर्य, हिसार हरियाणा से। रामशंकर यादव रासीपुर बहादुरपुर सिरकोनी से आपका संदेश। और ये अगला संदेश शामिल कर रहे हैं अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशब्द राहुल और विजेंद्र जयजान का। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। संदेश आया रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और इनके दोस्तों का। ये संदेश है शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन का ये संदेश। उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती और विनीत। शिवपुर बागान हावड़ा से शहबाज अंसारी, अब्बास अंसारी, रजिया खातून, नजमा खातून और हयात मोइन अंसारी। गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान और फारिया का। और यहीं से ताहिरा। ग्राम कलमंडी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत। ग्राम डाकघर

अमनाबाद जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कर्मजीत कौर। बाबू यादव, मंशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अन्नू यादव और अरुणेश यादव का संदेश आया देवकी बिहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी से। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता का संदेश और ये एक और नाम है डिंपल देवांगन। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा का ये संदेश आया है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। सदर बाजार मारवाड़, बिलारा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता है ये दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का संदेश और कुछ श्रोता बार बार अनुरोध के बाद भी हमें संदेश भेजते हैं कार्यक्रम में। रिपीट संदेश कृपया न भेजें ताकि हम सभी श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश को कार्यक्रम में शामिल कर सकें। जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का संदेश कार्यक्रम में शामिल हो रहा है और ये संदेश आया चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत आपका संदेश और ये संदेश है ग्राम भीलखेड़ी, तहसील सारंगपुर, राजगढ़, मध्य प्रदेश से धनराज बैरागी, सीमा बैरागी और किट्टू का। इमरती यादव, ग्राम भट्टी, पोस्ट सकलडीहा, चंदौली से असगर अली, अशोक कुमार प्रजापति, शिवपुर वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना, अंजलि, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति, राहुल प्रजापति, कुरौता लोहता वाराणसी से। पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार, अर्पिता का संदेश और ये संदेश आया सिद्धार्थनगर नांदेड़ से आरती छोटी, बबली रूपाली, वंदना धुले और सरू भाई धुले का मराठवाड़ा से। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से। जिन श्रोताओं के संदेश हमने शामिल कर लिए उनसे अनुरोध है कृपया दोबारा संदेश न भेजें। और पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह का संदेश, अगला संदेश आया है राजेंद्र यादव, भारती, उषा देवी, भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप, भगेलू यादव का वलीदपुर मढ़हा मऊ से। जबलपुर मध्य प्रदेश से कमल सिंह, विमल सिंह, कृषिव सिंह और समर सिंह का संदेश। ये संदेश है लसूरिया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका का। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन आपका संदेश और अगला संदेश वलीउल्लाह अंसारी। लोकल और राष्ट्रीय स्तर ये संदेश आया मिर्जापुर से त्रिलोकी पंडित, अनिल पांडे, प्रियांशु पांडे का। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया का ये संदेश और अगला संदेश कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर, आसिफ इकबाल आपका संदेश है और बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो एक ही नंबर से आप बार बार हमें बदल बदल कर संदेश भेज रहे हैं। कृपया आपसे पुनः अनुरोध करूंगी दोबारा संदेश अगर आपका शामिल हो चुका है कार्यक्रम में एक बार तो आप ना भेजें। ग्राम हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा का संदेश है। संदेश है अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा का, ग्राम नारी पचदेवरा गाजीपुर से। ये संदेश आया अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नसीर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा और मिखाइल जैनब मुजावर का ये संदेश
और एक और संदेश शामिल करते हैं, फिर चलेंगे हम

सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें थी, प्रेम गीत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और कार्यक्रम का आखिरी गीत तेरी कसम फिल्म से आपको सुनवाने जा रहे हैं। उसके पहले संदेश पढ़ते हैं। चोचकपुर बाजार गाजीपुर से राम सकल चौधरी का ये संदेश है। और अगला संदेश, आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, कछुआ कला, शाहजहांपुर से। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता का संदेश। लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या और शिवम का ये संदेश शामिल हुआ। अनिल गुप्ता, रमा गुप्ता, अग्रिम गुप्ता, अंकुश कुमार, पूजा गुप्ता का संदेश पहाड़िया वाराणसी से। ये संदेश आया है मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनई वाराणसी से, मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का संदेश। ये संदेश आया है ग्राम जीवरा हिसार से वीरेंद्र, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज और इनके मित्रगणों का। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी का ये व्हाट्सएप संदेश। यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद का संदेश शामिल हुआ कार्यक्रम में। पेहरा बाजार झुमरी तलैया से शिवानी कुमारी, प्रियंका, गुड्डू कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री, जिया, तुषी, आयुषी, अनिरुद्ध और शिव मंदिर चौक अर्जुनपुर से वसंतलाल साव, मुन्नी देवी, ये रिपीट संदेश है कार्यक्रम में। और अगला संदेश है रतलाम मध्य प्रदेश।

से जगदीश धाकड़, रंजू बाई, युवराज सिंह और शिवांगी। सोनू बिंद जौनपुर से आपका संदेश कार्यक्रम में। ग्राम भड़गा कोदवा छत्तीसगढ़ से श्याम सिंह मरावी, राजकुमार रानी, रजनी, राहुल, पूजा का ये संदेश आया। और सादुल शहर से राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी, वैशाली सोनी, गणेश चौक रातानारा। जोधपुर राजस्थान से नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी। मंगल जनागल राही रोशनी, अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील का ये संदेश आया पतरोड़ा से। भीमपुर भदोई से महेंद्र कुमार, सरिता, आशीष, सतीश, पूजा, नीतू, सानवी, रत्तू और नंदलाल। और यहीं से लालू और प्रद्युम का भी संदेश है। ये संदेश है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गुहानकर, सुमित ध्वनि, अभिजीत गुहानकर, सरिता, प्रिंस, शेकांश गुहानकर, बदलापुर, मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन पुनः हम कार्यक्रम में आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप संदेश हमें इस कार्यक्रम में भेजते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपने एक बार संदेश भेज दिया तो हम कार्यक्रम में उसे शामिल जरूर करेंगे और उसके लिए आपको

बहुत आभार, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपने एक बार संदेश भेज दिया तो हम कार्यक्रम में उसे शामिल जरूर करेंगे, और उसके लिए आपको पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहना होता है। और जो श्रोता बार बार रिपीट संदेश भेजते हैं उनसे अनुरोध, कृपया दोबारा ऐसा आप न करें, ताकि हम सभी के गीत के साथ नाम को शामिल कर सकें। और ये संदेश आया है चोचकपुर गाजीपुर से राम सकल चौधरी का। यहीं से भास्कर दुबे और इनके सभी मित्रगण एक संदेश और शामिल कर लेते हैं। दिलदार नगर गांव से जनार्दन पांडे, राधा पांडे और लड्डू पांडे का संदेश। आशीष कुमार महरेव जौनपुर से,

ग्राम नारी पच देवरा डी बाबा चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा। श्रोताओं, आप तेरी कसम फिल्म का ये गीत सुनते रहिए और मुझे यानी रेडियो हम सफर अंजना झा को अनुमति दीजिए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास,

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे, कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब

0: आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ।
1: इतिहास में इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोक जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर यदि आप ध्यान दें तो प्राकृतिक होता है, जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई

0: जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या हैं, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आएं, तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-4405-59। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद

0: ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
3: क्या गिन रही हो?
4: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।

0: कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू?
0: हाँ?
1: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओ जॉन्सी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू, मेरी दोस्त।
0: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।

0: की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: हाँ, हाँ।
3: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी।
1: एक
2: बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
1: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
1: असली पत्ता?

0: होता नहीं है।
1: नहीं,
0: लेकिन सू कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस।
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू
1: हाँ,
0: मास्टरपीस।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पर।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT
1: 0542227658
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं ज्योति यादव, इनकी आवाज में आज हम आपको सुनवाएंगे भजन और गीत। पहले सुनिए भजन, रचना मीराबाई की है।

इस भजन के बाद अब आप सुनेंगे गीत रचना महादेवी वर्मा की और कलाकार हैं ज्योति यादव।

किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ध्रुपद गायन। कलाकार हैं आशुतोष भट्टाचार्य। राग है मदमाद सारंग। पखावज पर संगत की है आदित्य दीप ने।

अभी आप सुन रहे थे आशुतोष भट्टाचार्य का ध्रुपद गायन। राग था मदमाद सारंग, पखावत संगति आदित्य दीप की थी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये निवासी हैं ग्राम गुदड़ी इमामबाड़ा थाना कोतवाली जनपद मिर्ज़ापुर के। काशी प्रसाद गुप्ता 30 अप्रैल 2026 से लापता हैं। काशी प्रसाद गुप्ता के बारे में जानकारी के बातें इस प्रकार। इनकी उम्र है 40 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, इनका रंग सांवला और चेहरा लंबा है। अगर आपको काशी प्रसाद गुप्ता के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थाना अध्यक्ष कोतवाली जनपद मिर्ज़ापुर को सूचित करें। और सूचना के लिए हम आपको फ़ोन नंबर भी बता रहे हैं, नंबर है 9305557066। नंबर एक बार फिर से सुने, 9305557066। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्ज़ापुर से ही प्राप्त सूचना के अनुसार खुशबू, जिनके पिता का नाम रमाशंकर है, ये निवासिनी है ग्राम बड़ी बरैनी थाना कछुआ जनपद मिर्ज़ापुर की। खुशबू 14 मई 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 20 वर्ष, चेहरा गोल, रंग गोरा और लंबाई है 5 फीट। अगर आपको खुशबू के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष कछुआ मिर्ज़ापुर को सूचित करें। और सूचना के लिए नंबर है 7386006056 7380600656। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कल कॉमर्शियल परवाजें शुरू हो गईं। शहरी हवाबाजी के वजीर किंजारपू राम मोहन नायडू ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि यह हवाई अड्डा पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन का नतीजा है। इस दरमियान हवाई अड्डे के लिए अपनी ज़मीन देने वाले 170 किसान कल मकामी MLA धीरेंद्र सिंह के साथ लखनऊ पहुंचे और वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। किसानों से बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत किसानों के मुनासिब हुकूक को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुनक्किदा डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शिरकत की। इस मौके पर सोशल मीडिया तख्लीककारों के साथ बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना एक विजन है और हुकूमत की मुल्क के तई एक जिम्मेदारी है, जिसे समाज के तमाम तबकात को शामिल करके एक अवामी तहरीक बनाकर ही कामयाब बनाया जा सकता है। 10 से ज़्यादा रियासतों के 100 से ज़्यादा डिजिटल असर व रसूख रखने वाले तख्लीककारों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में नुमाया तरक्की की है। इस मौके की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है, जिसका उनवान है 12 साल के एतमाद, तरक्की और लोगों के लिए फलाह बहबूद। आज हम दहशतगर्दी से निमटने के लिए हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बात करेंगे।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार।
1: आयुष की वजारत ने कल नई दिल्ली में 12वें बैन अल-अक़वामी योगा डे की शानदार तकरीब के लिए रस्मी तकरीबात का आगाज किया। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में नामानिगारों को बताया कि इस साल योगा डे की अहम तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड पर मुनक्किद होगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर 45 मिनट का

0: योगा प्रोटोकॉल मुनक्किद किया जाएगा। दरियां असना बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर 21 जून तक चलने वाले योगा हफ्ते के तहत रियासत के तमाम अजला में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। योगा हफ्ता रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हलके वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्ज़ापुर और बिजनौर समेत मुख्तलिफ अजला में शुरू हुआ, जिसमें अवामी नुमाइंदों, इंतजामी और पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और समाजी कारकुन प्रोटोकॉल के मुताबिक योगा कर रहे हैं। वाराणसी में इस मौके पर खिताब करते हुए आयुष के वजीर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में रियासत में योगा, आयुष और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2023 के तहत नई सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। 14 जून को वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इसका आगाज किया। गोरखपुर के ज़िला प्रोग्राम अफसर अभिनव मिश्रा ने बताया कि इस स्कीम के तहत 7 किस्म के मुस्तफिदीन को 10 किस्म की रेसिपी दस्तियाब कराई जाएंगी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में अतियात और कीमती अशिया के गबन के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई खसूसी तफ्तीशी टीम SIT ने कल अपनी तहकीकात शुरू कर दी। SIT की क़्यादत लखनऊ के डिवीज़नल कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस और महकमा ख़जाना के खसूसी सेक्रेटरी नील रतन इसके मेंबर हैं। हमारे नामानिगार ने इतला दी कि SIT ने तमाम मेंबरान कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने कमिश्नर और अयोध्या के ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ मंदिर अहाते का दौरा किया। SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम अंगनैया

0: तनी बुढ़ बुढ़ रली जा ना, तो
1: हम्म,
0: जाए जाए स्कूले पढ़े ना, तो डहरी में कई ठे पेड़ पड़े है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ
0: छहा छहा चल जाए, कई ठे चापाकल पड़े, मनई रुक ले प्यास लगल बा, केहू केहू से आवत बा, रुक गए तनी से दू घूट पानी पी लेलस। अब तो ऐसन सबके मतलब सुविधा का होड़ लगल बा ना, कि पेड़ काट काट के अपन खाली जौन है कि 2 तल्ला 3 तल्ला तानत हुआ, सबकर तो दुआरा जौन है कि पतई से गंदा होत बा है ना, तो कहाँ से तुमके पेड़ मिली है, कहाँ तू छहाई वो ही बतावा।
1: एकदम सही कहलू है मुनक्का दीदी। आज तक जवन मनई मने कि अंधाधुन दौड़ में दौड़त हो भाई, पते ना चलत हो ओके कि आए वाले समय में का होई कैसे होई। आ लेकिन देखा ना हो, अपने गाँव में तो तनी कम, लेकिन शहरी की ओर जाना तो तनी बेसी दिखाए ला कि अब घरे घरे देखा हो पंखा कूलर तो छोड़े दा। आजकल जो घरवा ठंडा करे वाला मशीनिया चल गए हो एसी,
0: हाँ
1: वो
0: सही
1: घरे
0: कह
1: घरे
0: लो,
1: लगा तो भाई ऐसा लगा तो
0: हाँ
1: बाजारे में जैसे कि 2 पैसा 3 पैसा का मिला था कि लोगन खरीद खरीद के जाते। एक तो महंग सामान हो फिर भी लोगन के देखा लगैले हुआ। हाँ ई ना देखत हुआ बिजली बत्ती के भी तो बचा के चले के हो भाई।
0: अरे एकदम सही कहलू है, 2 पैसा 3 पैसा का बात कैलू है ना, तो शादी बियाह में तो पहली बात की जौन हमने हमेशा विरोध कैला है ना, कि कुछ ला दे मत, लड़की खुद दे तो उनके पूरा भरपूर मिलत हैं है ना, घर भर
1: हाँ
0: जाता,
1: हाँ भाई
0: लेकिन मांग कह देते हुन कि एसी लेके यहा। अरे तू लोग समझा बूझा कि ई जौन अब अपने पर्यावरण के लिए इतना नुकसान दे है, गंवा में तो निक लगत है तनी सा मौसम के हिसाब से हो, पेड़ पालो है ना, गर्मी नहीं लगत है उतना, बाकी सही कहा तू, सहरिया में तो जैसे लगत है कि आग फेंकल हो घरवा में से, तो भाई ई कुल यही के वजह से है। अपन जानकार लोगन भी कहा ना कि बहुत ज्यादा एसी या बहुत ज्यादा कूलर या बहुत ज्यादा जौन है टीवी, ई सब भी अपने जौन पर्यावरण है ओकरे जौन तापमान है उमन बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करला हो। जरूरत है तू लोग के पहले बात की ऊर्जा का, जौन ई साधन हुआ एकर कम उपयोग करा, और ऊर्जा का कम से कम उपयोग करा, बचत करा ना ओकर।
1: बचत तो बहुत जरूरी हो। कहे से कि यही समय देखा कितना मने घबरा जाता, तैसी लाइन कटत हो तो मने एकदम घर के बाहर निकल जात हो। लेकिन ओकरे बाद सोचे के चाही ना कि जवन बिजली हम लोगन के मिलत हो तो
0: हाँ
1: उन्हें का इस्तेमाल सही ढंग से करे के चाही भाई। जब घरे
0: हाँ
1: से निकला या कमरा में से निकला तो बिजली बत्तियों के बंद कैदा,
0: हाँ
1: जौन मशीनी से चले वाला सामान हो ओके बंद कैदा, ओके देखा कि जौन ओकर मने कि जो लगल हो पलक हो चाहे स्विच हो तो ओके बंद कैके निकला भाई।
0: बिल्कुल
1: तन्नी तन्नी अगर हम लोगन जागरूक होब ना आ ई कुल देखत ताकब चलब तो अपन ऊर्जा का बचत हो
0: ए
1: सके।
0: गुंजा देखा, ऊर्जा का बचत खाली बिजलिए के बात तक ना होए के चाहिए,
1: हाँ
0: और भी
1: हाँ
0: चीज है, जैसे अपन पेट्रोल बा, डीजल बा है ना, गैस बा जौने से गाड़ी भी चलत, या फिर देखा खाना बनाओ का जौन गैस है, ई कुल बचाना जरूरी है। सबकर कपारे समय ठनकल है जौन की इतनी दिक्कत है, खाना बनाओ के भी गैस ना मिलत है, गाड़ी चलाओ बदे पेट्रोल का कमी होता, सब जानत है कि कितना दिक्कत होता, तो देखा जौन है कि दिमाग से अपने चले लोगन, बचत करा है ना, जितना जरूरत हो उतना ओकर उपयोग करा, नहीं तो फिर उपासे के पड़ी। आ जवन ए गांव में चलत होने टोला से वो टोला, तो गाड़ी लेके दुपहिया फटफटाए के चल देते हुआ ना, तो इहो बंद पड़े लगी, इसलिए जरूरी है बहिन लोगन आप भी ध्यान दें, घरे में अगर जौन लड़का हो उनके समझावें कि भाई जितना हो सके पैदल चलें, बहुत जरूरी है तब फटफटहिया का इस्तेमाल करें।
1: भाई ई कुल तो बात चलवे करी हम लोगन का, लेकिन ये जो जरूरी संदेश हो
0: हाँ
1: ओके
0: हाँ
1: सुनवा देवल जाए, ओकरे बाद बतियावल जाए।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: बदलो बदलो आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 0542227658।
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: सनेस तो होएगल गुंजा।
6: हाँ?
5: एक है बात पूछे के है।
6: का?
5: अरे काल हम गया रली तोहरे घरे कोरी, तो तू पता चलल कि ओटोला गयल हूँ नदी कोरी, बहिन लोगन का जुटा के कुछ बतावे कि हम कहीं चलत ही। अच्छा आज भेटे हैं गुंजा तो पूछ।
6: तो बड़ा नीक पूछ लेलू है, तुहू कोई बताए वाली रही, बात कह दिलू तो सुना तब। जानत हो कहे गेल रही है?
5: कहे हो?
6: अब देखा हो सरकार की ओरी से कितना सुविधा मिल रहा हो बहनी लोगन के, तो ओके उपयोग करल भी जरूरी हो। भाई सरकार तो अपनी ओर से सुविधा देत हो, लेकिन बहनी लोगन के देखा जवन सुविधा मिलत हो ओके जाने का ओके जानकारी ओकर जरूरी हो। तो आज देखा यही बात पे जो बतकही लेके आवल गए ना, तो बहनी लोगन के ओके बहुत जानकारी मिली।
5: अच्छा।
6: तो आज का बतकही हो ग्रामीण महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं और सरकारी योजनाएं। ए पे रमिता तिवारी द्विवेदी से बतेले हैं अपन शिखा श्रीवास्तव बहनी, तो बहनी लोगन के सुने।
5: बहनी लोगन सुने।
7: श्रोता बहनी, आज हमारे साथ एक कार्यक्रम में आये हैं रमिता तिवारी द्विवेदी जी। ये प्रखंड समुदाय प्रक्रिया प्रबंधक बिरनो गाजीपुर में हैं, और आप लोगन के जानकारी दी है कि गांव के महिला लोगन के ए घड़ी कौन कौन सुविधा दिहल जाता और सरकार के तरफ से कौन कौन योजना चलावल जाता। तो बहनी आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
8: जी धन्यवाद।
7: आप बहनी लोगन के बताएं कि एक घड़ी कौन कौन सुविधा सरकार की ओरी से ग्रामीण महिला लोगन के दिहल जाता।
8: ग्रामीण महिलाओं को सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो सुविधाएं वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या गांव में रहती है, उनमें अनुमानता क्या हम कहेंगे आधी जनसंख्या हम महिलाओं की ही होती है। और ग्रामीण भारत की प्रगति जो है वही भारत की प्रगति है, क्योंकि भारत एक गांव का देश है।
7: सही बात कहते हैं।
8: और ग्रामीण भारत की प्रगति का सीधा संबंध वहां के महिलाओं के सशक्तिकरण से होगा। तो जो योजनाएं चल रही हैं उनसे हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, तभी उनका विकास हो पाएगा।
7: अच्छा, और तब योजना के बारे में बताएं फिर।
8: जी, तो भारत सरकार और राज्य सरकार जो है वो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका है जिससे संबंधित योजना है। इसके तहत ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है। इसके अंतर्गत कौशल विकास के तहत लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारी जो बहने हैं गांव की बहने, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जिसे वे बेहतर काम कर सके और बिना किसी परेशानी के बैंकों से ऋण उनको मिल सके। इसके लिए समाज का हर वर्ग को, विशेषकर महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
7: अच्छा, प्रशिक्षण लेने बदे कहाँ जाए के होला?
8: ये प्रशिक्षण लेने के लिए हमें तीन विभाग जो है जो जिनके द्वारा चलाया जाता है वहाँ हमें संपर्क करना पड़ेगा। जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसका उद्देश्य है गांव के महिलाओं के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना, जो स्वयं सहायता समूह के नाम से चलाया जाता है।
7: हर गाँव में?
8: जी हाँ, ये हर गाँव में चलाया जाता है। इन समूहों को कम ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराता है ताकि वे छोटे मोटे व्यवसाय कर सकें। इसके लिए स्वयं सहायता समूह के लिए अगर आपको उसमें अगर प्रतिभाग करना है हमारे गांव की बहनों को, तो हमें पंचायती विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। फिर है लखपती दीदी योजना। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य है 3 करोड़
7: अच्छा
8: ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमी बनाकर उनका वार्षिक आय कम से कम 1 लाख तक पहुंचाना है। ये बहुत ही अच्छी योजना है।
7: सही बात है।
8: इसमें कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प जैसे छोटे मोटे उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

0: समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचने के लिए मेला हाट प्रदर्शनी की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं स्वयं सहायता समूह पंचायत कार्यालय खंड विकास अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
1: अच्छा।
0: जो कि प्रखंड पे होता है
1: वहाँ
0: वो जा करके और उनसे मिल करके इसके बारे में जानकारी ले सकती है।
2: तो मैंने फार्म भी मन भरायला
0: जी, ये वहाँ पर जाने पर प्रक्रिया बताएंगे वो लोग।
2: अच्छा।
0: कि अगर इसके लिए जैसे गांव में बीसी सखी हैं, ये बीसी सखी भी इनको संचालित करती हैं।
2: अच्छा।
0: तो पहली बार तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा जानकारी के लिए, फिर वहाँ से वो लोग बीसी सखी के माध्यम से कार्य को आसान कर देंगे जो गांव में ही उपलब्ध होती हैं, और उनसे फिर महिलाएं संपर्क करके अपने कार्य को कर सकती हैं। फिर अब मान लीजिए जो सामान महिलाएं तैयार करें, जैसे अचार हुआ, पापड़ हुआ, जैम हुआ, जेली हुआ, चटनी हुआ, ये सब जो ग्रामीण महिलाएं बना रही हैं, इनको इन उत्पाद को बेचने के लिए भी तो एक मंच चाहिए। तो इस मंच के लिए हमारे यहाँ समय समय पे जो है प्रदर्शनी लगाई जाती है, हाट की सुविधा दी जाती है, फिर ऑनलाइन व्यवस्था भी है।
2: अच्छा।
0: जी हाँ, महिला ई हाट, इससे क्या होता है कि जो महिला उद्यमी है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन अपने उत्पाद को प्रदर्शित करती है, उनका प्रचार प्रसार करती है, ये उनको बेचने में मदद करता है। अब महिला अगर अपने आजीविका पर आत्मनिर्भर हो गई, अब फिर दूसरा उनका है कि उनका स्वास्थ्य और पोषण। महिला जब स्वस्थ रहेगी, उनका सही देखभाल होगा, तभी तो कार्य कर सकती है।
2: हाँ,
0: अब ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं के स्वास्थ्य के सुधार के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।
2: अच्छा।
0: महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभागीय कर्मचारी को अभियान के रूप में चला करके इन सब की जानकारी जो कार्यक्रम चल रहा है उनको दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, भारत सरकार द्वारा 2022 में मिशन शक्ति के तहत इसकी शुरुआत की गई। इस योजना में एक महिला को 5,000 की धनराशि 2 किस्त में उनके बैंक खाते में दी जाती है।
2: अच्छा।
0: पहले किस्त के लिए महिला का पंजीकरण पहले तिमाही में, गर्भवती महिला का पहले तिमाही में पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण कराने के बाद उनका टीकाकरण कार्ड और बैंक खाता, ये दोनों जो हमारी आशा कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको दिया जाएगा, उनके माध्यम से उनका फॉर्म भरा जाता है।
2: अच्छा।
0: तो पहली किस्त उनके खाते में चली जाएगी। दूसरी किस्त जब उस महिला का संस्थागत प्रसव हो जाएगा और जब जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और बच्चे को पेंटा थर्ड का टीका लग गया, तब फिर टीकाकरण कार्ड का एक दिया जाएगा उनको, जो हमारी कार्यकर्ती हैं, आशा कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, और वो फिर उस फार्म को ऑनलाइन कर देंगी जिससे कि उनकी दूसरी किस्त उनके खाते में चला जाएगा।
2: अच्छा, एक चीज और आपके रोका पूछल चाहते कि अगर बिटिया हो चाहे बेटवा हो, केहू में
0: किसी को भी मिलेगा।
2: हाँ।
0: अच्छा। बेटा हो या बेटी हो, उनको ये मातृ वंदन, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ उनको मिलेगा।
2: अच्छा।
0: हाँ, दूसरा बच्चा अगर उनकी पुत्री हुई तो उनको दोबारा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर दूसरा उनका बच्चा हुआ वो अगर पुत्र हुआ तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। अगर पहली बार भी पुत्री है और दूसरी बार भी पुत्री है तो उस महिला को दोनों बार ये लाभ मिलेगा।
2: ये
0: जी हाँ, ये लिंग भेद को खत्म करने के लिए और इसे प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे समाज में समानता आने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये योजना चलाई गई। जननी सुरक्षा योजना भी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ये गर्भवती महिला को मिलता है जब उनका बच्चा हो जाता है, संस्थागत प्रसव अस्पताल में होगा। जब संस्थागत प्रसव होगा तो माँ बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, तब महिला के खाते में 1400 रूपए की धनराशि जाती है।
2: अच्छा।
0: ये वहीं से ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही ये फॉर्म भर दिया जाएगा। अगर उनका प्रसव कहीं प्राइवेट अस्पताल में होता है तो उस महिला को ये सुविधा नहीं मिल सकती, वो इस सुविधा से वंचित रह जाएगी। विशेषकर ये सुविधा हमारी ग्रामीण बहनों के लिए है, तो हम अपनी बहनों से कहेंगे कि वो अपना प्रसव संस्थागत ही कराएं, जिससे जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे और ये लाभ भी उन्हें मिलेगा।
2: अच्छा, एक चीज और जानना चाहा बहन कि का उनके स्वास्थ्य और पोषण पते उनके खाए पिए का भी कुछ व्यवस्था?
0: जी हाँ, ये जो सरकार व्यवस्था दे रही है, ये 1400 रूपए की जो धनराशि है वो माता को खाने पीने के लिए ही देती है।
2: अच्छा।
0: कि इससे से वो अपना अपने से खाना पीना अपना वो कर सकती है, अगर आर्थिक मदद है ये उनके लिए ये वो देती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब धात्री माता हो जाती है, धात्री माता होगी तो माँ बच्चे को दूध पिलाती, 6 माह तक जो महिला दूध पिलाती उनको धात्री माता कहा जाता है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है पोषण अभियान, ये धात्री माता को दिया जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य किशोरी गर्भवती एवं धात्री माताओं के साथ साथ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को पोषण स्तर में सुधार करना है, जिसकी डिजिटल ट्रैकिंग भी होती है,
2: अच्छा,
0: निगरानी होती है जी,
2: हाँ,
0: पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा होता है,
2: अच्छा,
0: जो प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित होता है। पोषण अभियान में किशोरियों महिलाओं में एनीमिया को भी कम करना है,
2: अच्छा,
0: ये बीमारी कुपोषण से होती है, तो ये बहुत ही लाभकारी है। तो हम ये सभी बहनों से ये निवेदन करेंगे कि वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं और इसका लाभ लें। सामाजिक सुरक्षा और जीवन सुगमता, अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जाते हैं। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि समय की भी बचत होती है। स्वच्छ भारत मिशन जो कि सभी लोग जानते हैं,
2: हाँ,
0: जिसमें जो इज्जत घर लिखा होता है,
2: हाँ,
0: हमारी सभी बहने ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके तहत ग्रामीण घरों में शौचालय के निर्माण से महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान होता है। इससे जो हमारी बहनों को बाहर जाना पड़ता था शौच के लिए, ये एक विशेष व्यवस्था हो गई जिससे कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा और कौशल विकास के तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना भी है। यह योजना लिंग आधारित भेदभाव को रोकने और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। जैसे कि हमारे समाज में पहले था कि लड़कों को पढ़ाया जाता था और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, और हमारी लड़कियां जो है शिक्षा से वंचित रह जाती थी, लेकिन ये योजना हमारी लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे कि हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आज हर क्षेत्र में बराबर की वो भागीदारी कर रही हैं। शिक्षा हो, अर्थ हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। तो ये योजनाएं सभी चल रही हैं। हाँ, इन योजनाओं की जानकारी हमें रखनी चाहिए। मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि वो ये सारी कार्यक्रम को सुने, जिससे कि ये जानकारी दी जाती है और इन योजनाओं को लाभ उठाए।
2: अच्छा, ग्राम प्रधान के पास भी तो जाई है, तो उन्हों के पास से जानकारी?
0: बिल्कुल, ग्राम प्रधान के पास जाएंगी तो ग्राम प्रधान एक बहुत ही अच्छा उनके लिए वो है कि वो उन्हें जो है ये खंड विकास के यहाँ पहुँचा देंगे, खंड विकास अधिकारी के यहाँ पहुँचा देंगे। उनकी आए दिन बैठक होती है, वो भी उनको बताएंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, और सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है कोई। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, यह NRLM का एक उपघटक है जिसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना। तो हम आधुनिकीकरण की तरफ भी बढ़े, पुरानी तरह से अगर हम खेती करेंगे तो हमारी आमदनी कम होगी, तो आधुनिकीकरण है उसको भी हमें लेकर के चलना चाहिए, तभी हमारा समरंगिक विकास होगा।
2: बहुत नीक नीक आप जानकारी दे लीन बहन, इतना योजना कुल बतौलिन बहनी लोगन, अगर ध्यान से सुनत हुई है तो उनके बहुत जानकारी हुई, और जानकारी के गठिया के रखे के है उनके, जागरूक होए के है आगे आवे के है। लेकिन अब चले का बेरा होता था, चलत चलत बहनी लोगन के का संदेश दे?
0: मैं बहनों से यही निवेदन करूंगी, उन्हें यही संदेश दूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, जानकारी आप रखिए, आप जागरूक बनिए। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगी तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो सारे कार्यक्रम को सुने, जाने और इस पे पहल करे, तभी वो इन कार्यक्रमों के लाभ ले सकती हैं।
2: बहुत बढ़िया जानकारी रमिता तिवारी द्विवेदी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आईलिन। और ग्रामीण महिला लोगन के कौन कौन सुविधा और कौन कौन योजना सरकार के तरफ से दिहल जा था, बतावल जा था, इकुल विषय में इतना महत्वपूर्ण जानकारी साझा कैलिन, एकरे बदे आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बड़ा निक बत कही रहल ह बहिन लोगन, यही से हम कहत रही कि गुंजा का जौन है कि ओटोला जाय के बटोर के बहिन लोगन के समझावत बुझावत हैं। तो ग्रामीण महिला लोगन खातिर जौन सुविधा देहल जाता आ साथे में जौन सरकारी योजना उनके मिलत है, ये विषय पर रमिता तिवारी द्विवेदी से शिखा श्रीवास्तव बहिन के बातचीत भइल ह। बड़ा फरिया के गुंजा बतैनी है जौन है रमिता तिवारी की, भाई कहाँ से उनके कैसे योजना के देखा लाभ मिली, कैसे उसे सहायता ले सकनी। अब बहिन लोगन आप लोग जरूर सहायता ले हैं।
2: इतना नीक के बात कही के बाद मुनक्का दीदी हम तो कहब न कि बहिनी लोगन के तनी मन मनसाए देवल जाए।
1: अरे कहा मत, बहिन लोगन भी जोहत हैं, तो बहिन लोगन का जौन जोहब ओके अब हमन करल जा कम।

0: देखलू कल्पना चटर्जी के ई जौन है कि गौनई रल है कितना नीक रहल हो। हम कहीं गुंजा सही में ननद के गांव जा उनके घरे जा इतना प्रेम मिलल है इतना नीक लगल है ना।
1: भाई ननद भौजाई का प्रेम तो ऐसे भी देखा बड़ा नीक लगे
0: बड़ा नीक।
1: देखे में
0: हाँ
1: देखा हो। एकरे बाद अपने बहनी लोगन के तनी और भी बता देवे के चाहिए। देखा जानकारी तो बहुत मिला तो अपने कार्यक्रम से, लेकिन जानकारी के और आगे बढ़ावल जाए। आ मौसम का जो हाल देखा दई ना हम लोगन, एकरे संगे संगे अपन खायल पियल का भी

0: तो ध्यान रखल बहुत जरूरी है। ऐसे तो अपन बहनी लोगन देखा देखते रहते हैं कि मौसम के अनुसार का खाए बनाए के चाहिए, का खियावे के चाहिए, अपने घर परिवार का कैसे ध्यान रखे के चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो घर का ननकन होला ना, उनकर तो और भाई जीव मने की कहता कि पांच हाथ आगे निकलल रहेला। कहे से कि उनके घरे का खाना ना निक लगी, बहरे का अटर चटर पटर इतना खाइए ना कि खाइयन त खाइयन, और कुछ दिन बाद जब बीमार हो जाइए ना तो घर में महतारी परेशान हो जाइए।
1: यही से तो कहल गल है कि देखा बड़न का काम है ध्यान रखा भाई, बच्चन का नटखट होबे करे ना, बच्चन के तो ये नहीं पता है ना कि ओसे ओके जौन है कि जौन चटर पटर का बात करत हो के खैले से का उनके दिक्कत हुई, उनके तो अच्छा लगला वो खैबे करिए। यही से बड़न का हमेशा काम है घर में, जे भी बड़ भैया हुआ दीदी है या जे भी है सबके बात का ध्यान दिखा रखे के चाहिए। आ दूसर बात है कि देखा मौसम आ स्वास्थ्य एकदम एक दूसरे से जुड़ल है ना, ओहू में साफ सफाई के बात अगर ना करबू ना तो एकदम बात कम हो जाई पूरा ना होई। माने देखा कहीं भी जा, चाहे तू अपने घरे के बात करा या बाहरे जाता हूँ बाजारे हाटे जाता हूँ, वहाँ भी ये बात का पूरा ध्यान रखे भाई कि जो भी चीज खात हुए खरीदत हुए खाए बदे वहाँ वो जगह का आज अगर जहाँ परोसल जाता वो बर्तन का ध्यान रखे कि उमन सफाई के विशेष जौन है कि बरतें के है ना। और साथे साथे हम कहें कि खाए से पहले भी जो बहुत छोटी बात है लेकिन हो बहुत बड़ कि अपने हाथ के अच्छे से साफ करके तब जौन कुछ भी खाएं, आ कटल सामान तो एकदम मत खरीदें, खुलल सामान एकदम मत खरीदें और न खाएं।
0: संगे संगे जन लैकन बच्चन का बात करत है ना, देखा हो बाहरे निकले ले ना तो पैकेट का जो सामान होला वो खावे खाएलन। आ हम कहत है कि खाए पी के इधर उधर फेंके से बढ़िया हो, अगर वो खात हुआ तो चाहे जो बर्तन बनल रहला जो डब्बा बनल रहला फेंके वाला उनके समझावा कि उहे में डाले। कहे से कि अपन प्रकृति अपन पर्यावरण के बचावल भी जरूरी हो, ये कुल जन कूड़ा करकट फैले ला ना उसे अपन पर्यावरण बहुत प्रभावित होला।
1: बिल्कुल प्रभावित होला और सीधा जौन है कि असर हमने पर पड़ा हमन के साथे साथे और जौन ये वातावरण में हुआ छोट बड़ जीव जंतु सबके ऊपर पड़ाला। काहे से आपन जौन जीवन शैली है देखा उ समय के साथ बदलत है, और ये बदलते जीवन शैली में भी ओकर ध्यान रखे बदे देखा चिकित्सा का भी जरूरत हो जात हो कबो कबो। तो देखा हमने अपने हेलो अंगनैया कार्यक्रम में जौन की 23 तारीख के हुई 23/6/2026 के उमन यही विषय पर सीधे बहिन लोगन डॉक्टर नम्रता जोशी से बात करी है कि जौन बदलत जीवन शैली है और रसायन चिकित्सा का कितना जरूरत है वो जीवन शैली के जौन है कि तालमेल बनावे बदे ये विषय पर जरूर फोन करी हन। फोन नंबर रही 222-1052 और एसटीडी कोड रही 0542।
0: तो बहनी लोगन ए पे फोन करिहा आ अपने समस्या का समाधान पहिया। तो ए मुनक्का दीदी
1: का हो
0: देखा हो हम लोगन समय से आईला ना तो समय से जायल भी जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है।
0: ता ए घड़िया तनी देखबू।
1: अरे देखत तो है घड़ी हमन के चेतावत है कि अब अपन बतकही करा लोगन बंद, तो हमन अपन बतकही बंद करत है जा। अगले कार्यक्रम में फिर एक नई जानकारी के साथ बहिन लोगन से मिलल जी, तो चला चलल जा।
0: नमस्ते, नमस्ते।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अंगनैया। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं रामनाथ और साथी। इनकी आवाज में पहले आपको सुनवा रहे हैं सोरठी।

0: Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the intergovernmental negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
1: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
0: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in their opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at Sophie Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month ahead of any ETUG retest. Message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath, main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेवन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बना

0: ना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।

0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुहाने तराने। सुहाने तराने कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा। नमस्कार। तो श्रोताओं चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सुनवाती हूं आपको कार्यक्रम का पहला तराना जो है फिल्म लोफर से। बॉलीवुड फिल्म लोफर का क्लासिकल सॉन्ग है ये। इसे महान गायिका लता मंगेशकर ने गाया। ये एक मधुर और रोमांटिक सॉन्ग है। इस गाने का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया है और ये गाना अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति और खूबसूरत बोलों के लिए जाना जाता है। ये गीत धर्मेंद्र और मुमताज पर फिल्माया गया है और यह भारतीय सिनेमा के सदाबहार प्रेम गीतों में से एक है। तो आइए सुनते हैं।

1979 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है सरगम, जिसे के विश्वनाथ ने लिखा और निर्देशित किया। ये उनकी पिछली तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मूवा का हिंदी संस्करण था, जिसमें जयप्रदा भी थी और जिसने उन्हें दक्षिण भारत में स्टार बना दिया। उन्होंने इस फिल्म से हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म में जयाप्रदा ने एक मूक नर्तकी की भूमिका दोहराई। फिल्म में ऋषि कपूर उनके साथी की भूमिका में है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने यादगार गीतों की रचना की, जिसने फिल्म के लिए एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आनंद बख्शी ने गीत लिखे। मोहम्मद रफी ने सभी 7 गाने गाए, उनमें से 3 लता मंगेशकर के साथ युगल गीत थे, जिनमें प्रसिद्ध गीत डफली वाले डफली बजा आज हम कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं। और ये गीत हम आपको बता दें कि कश्मीर में शूट किया गया था। जी हाँ, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और 1979 में बॉक्स ऑफिस पर सुहाग और जानी दुश्मन के बाद तीसरे स्थान पर रही। इस फिल्म ने जयाप्रदा को रातों रात हिंदी सिनेमा में सनसनी और स्टार बना दिया और उन्होंने हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना पहला फिल्म फेयर अपने नाम किया। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

1969 में बनी भारतीय हिंदी संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है आराधना, जिसका निर्देशन शक्ति सामंत ने किया है, जिसमें शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना ने अभिनय किया है। इस फिल्म ने 17वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। शर्मिला टैगोर ने अपना एकमात्र फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। मूल रूप से हिंदी में रिलीज और बंगाली में डब की गई आराधना की भारी सफलता के कारण इसके दो रीमेक बने, तमिल फिल्म शिवगामीन सेल्वन और तेलुगु फिल्म कन्नवारी कलालू। यह फिल्म 1969 और 1971 के बीच राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों में गिनी जाती है। आराधना भारत और सोवियत संघ में एक ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म का साउंडट्रैक एसडी बर्मन ने तैयार किया था, जिसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। सचिन देव बर्मन ने आराधना के गानों को लिखा था। राहुल देव बर्मन ने इस फिल्म में सहायक

कारवां 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन नासिर हुसैन ने किया है और इसका निर्माण उनके भाई ताहिर हुसैन ने नासिर हुसैन फिल्म्स और टीवी फिल्म्स के बैनर तले किया है। फिल्म में जितेंद्र और आशा पारेख ने मुख्य भूमिका निभाई है। संगीत निर्माण में हुसैन के 3 कलाकार शामिल थे, संगीतकार आरडी बर्मन, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और गायक मोहम्मद रफी। फिल्म का कथानक गर्ल ऑन द रन से प्रेरित था। कारवां भारत में घरेलू स्तर पर सुपरहिट रही। 1979 में जब यह चीन में रिलीज हुई तो इसे विदेश में और भी ज्यादा सफलता मिली और यह चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन गई। अनुमान है कि इस फिल्म ने एशिया में 300 मिलियन से ज्यादा टिकटें बेची, जिनमें से ज्यादातर चीन में थी। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कारवां से ये गीत।

सुहाने तराने कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म धरती से। जी हाँ, 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है ये, जिसे सीवी श्रीधर ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1969 की तमिल भाषा की फिल्म शिवंधा मान की रीमेक है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में जयकिशन की लिखी रचना फिल्म धरती से।

0: सुहानी तराने। इस कार्यक्रम में आज का सफर बस इतना ही श्रोताओं, दीजिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सुहाने तराने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी गीत। आज के कलाकार हैं दुर्वा राम मरकम और दुखियाबाई। आइए पहले सुनते हैं दुखियाबाई का गाया ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। कलाकार हैं दुर्वा राम मरकम और दुखिया बाई।

0: बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: मीडियम वेव 241.5 चैरमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का प्रोग्राम युववाणी।

0: दुर्वारा मरकम और दुखिया बाई के गाए इस गीत के साथ ही धरती गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून।

0: कहते हैं घर से दूर रहने वाला हर इंसान अपने साथ सिर्फ सपने ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें भी लेकर चलता है।
1: जी हाँ दोस्तों, साथ ही ये भी कहते हैं कि जो अपनों के सपनों को उड़ान देते हैं वे ही असली जीवन के नायक होते हैं।
0: क्या बात है, आज के शो की शुरुआत इतनी प्यारी प्यारी बातों और इतने अपनेपन के साथ हो रही है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं लेकर आपकी अपनी युववाणी,
1: जिसमें आज आपके साथ हैं आपके ये दो रेडियो साथी, मैं शालिनी
0: और मैं आस्था। तो स्वीकार कीजिए हमारा खूब सारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: आज यानी कि 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के अवसर पर हम उन लाखों लोगों को सलाम करते हैं जो अपने घर, अपने गांव, अपने शहर और अपने प्रियजनों से दूर रहकर मेहनत करते हैं और उनकी कमाई का एक हिस्सा हर महीने उनके परिवार तक पहुंचाते हैं।
0: जो किसी के लिए बच्चों की पढ़ाई बन जाता है, किसी के लिए माता पिता की दवा, तो किसी के लिए बेहतर भविष्य की नींव।
1: तो दोस्तों, जब कोई बेटा या बेटी हजारों किलोमीटर दूर रहकर अपनी अपनी कमाई घर भेजता है, तो वह केवल पैसे नहीं भेजता, बल्कि अपने प्यार, अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति समर्पण और संदेश भी भेजता है।
0: ये दिन हमें याद दिलाता है कि परिवार की खुशियों के लिए किया गया हर त्याग अनमोल होता है। उन प्रवासी कामगारों, कर्मचारियों और पेशेवरों की मेहनत न केवल उनके परिवारों को सशक्त बनाती है बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।
1: आज आइए उन सभी को सम्मान करें जो दूर रहकर भी अपने परिवार का सहारा बने हुए हैं। उन सभी चेहरों को याद करें जो अपनी मुस्कान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बता दें कि आज के ही दिन दो महान विभूतियों की पुण्यतिथि भी है, जिन्होंने अपने ज्ञान, कर्म और राष्ट्र सेवा से भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। और उनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय और चितरंजन दास।
1: आचार्य प्रफुल्ल राय को भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्योगपति और समाज सेवी के रूप में उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। उन्होंने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बंगाल केमिकल और पैरासूटिकल की स्थापना की, जो भारत की पहली औद्योगिक निर्माण कंपनियों में से एक थी।
0: उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम भी है। वहीं देशबंधु चितरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नेताओं में थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। वे एक प्रख्यात वकील, कुशल वक्ता और दूरदर्शी राजनेता थे।
1: उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और जनजागरण के माध्यम से लाखों भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। उनके त्याग, नेतृत्व और संघर्ष के कारण उन्हें स्नेहपूर्वक देशबंधु अर्थात देश का मित्र कहा गया।
0: और इन दोनों ही महान विभूतियों के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, सेवा, त्याग और राष्ट्रभक्ति ही किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं।
1: आपका जीवन और आपके आदर्श सदैव हमारे प्रेरणा देते रहेंगे।
0: आज आप दोनों को ही आपकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश काव्य पाठ, जिसमें

0: हम सुनेंगे तनु जायसवाल की काव्य रचनाएं।
1: नमस्कार, मैं तनु जायसवाल आप सभी का ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पे आज काव्य पाठ के लिए आई हूँ और मेरा टॉपिक है पर्यावरण की पुकार। पर्यावरण की पुकार में हम बात करेंगे पर्यावरण की, जो हमारा जो पर्यावरण है बहुत ही दूषित होता जा रहा है। तो मेरी कविता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण कैसे हमारा दूषित होता जा रहा है। तो कविता है मेरी, हरा भरा था यह संसार पेड़ पौधों का सुंदर उपहार, स्वच्छ हवा और निर्मल जल इनसे ही जीवन है सफल। पर आज प्रकृति रोती है, मानव की भूले ढोती है, कटते जंगल बढ़ता धुआं, हर ओर फैला है प्रदूषण का कुआं। आओ मिलकर शपथ उठाएं, हर वर्ष नए पेड़ लगाएं, जल बचाएं, धरती सवारे, प्रकृति के हम सच्चे रखवाले बने। पर्यावरण है जीवन का आधार, इनकी रक्षा है हम सबका अधिकार। स्वच्छ और सुंदर बने जहाँ, यही हो अपना प्यारा हिंदुस्तान। मेरी दूसरी कविता है पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ। इसमें हम पर्यावरण बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ही दूषित होता जा रहा है, जो प्रदूषण की वजह से और पेड़ों की कटाई की वजह से आए दिन रोज पेड़ कटते जा रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हम पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं। तो मेरी कविता है, सुनो दोस्तों एक बात बताऊं, सुनो दोस्तों एक बात बताऊं, पर्यावरण का महत्व समझाऊं, धरती जल आकाश और वायु इन्हीं से मिलकर बनता पर्यावरण का रूप। हरे भरे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हरे भरे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियाँ जीवन का अमृत देती हैं, पक्षी मीठे गीत सुनाते हैं, फूल अपनी खुशबू फैलाते हैं। लेकिन आज प्रकृति संकट में है, मानव की गलतियों के कारण दुख में है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, नदियों में गंदगी बढ़ रही है, कारखानों का धुआं हवा को प्रदूषित करता है, प्लास्टिक धरती को दूषित करता है, जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है, धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि हम अभी नहीं जागेंगे तो आने वाले कल को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए हमें पेड़ लगाने होंगे, जल और बिजली बचानी होगी, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, स्वच्छता का संदेश घर घर पहुंचाना होगा, मिलकर प्रकृति का सम्मान करें, एक सुंदर और स्वच्छ भारत का निर्माण करें। पर्यावरण है जीवन की शान, इससे ही है हमारी पहचान, आओ सब मिलकर यह संकल्प लें, पर्यावरण की रक्षा हर हाल में करें। तो पर्यावरण को हमें बचाने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है क्योंकि पर्यावरण हमारा खतरे में है, आए दिन पेड़ों की कटाई हो ही रही है और अभी अरावली पहाड़ भी कटने की वजह से बहुत ज्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो मेरी दूसरी कविता है युवा के बारे में, जो आज की जो युवा है वो नई पीढ़ी की है, तो नए चीजों को नए तरीके से देखती है, उनकी नई सोच है और उनके सोचने की शक्ति भी सब अलग है, नए तरीके से अपनी चीजों को देखते हैं। तो युवा है हम नई उड़ान के परिंदे, युवा है हम नई उड़ान के परिंदे, नई सोच और नए सपनों की पहचान, नई सोच और नए सपनों की पहचान, हमसे ही रोशन है देश का वर्तमान और भविष्य महान, हमसे ही रोशन है देश का वर्तमान और भविष्य महान, हमारी आंखों में उम्मीदों का उजाला है, हमारी आंखों में उम्मीदों का उजाला है, हर मुश्किल से लड़ने का हौसला निराला है, न हार हमें रोक सकती है, न हार हमें रोक सकती है, न कोई बाधा झुका सकती है, हमारी मेहनत और लगन हमें सफलता तक पहुंचा सकती है, युवा वह शक्ति है जो समाज को नई दिशा देती है, युवा वह शक्ति है जो समाज को नई दिशा देती है, ज्ञान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई क्रांति लाती है, हम अपने विचारों और कर्मों से बदलाव लाते हैं, हम अपने विचारों और कर्मों से बदलाव लाते हैं, देश की उन्नति के लिए हर दिन नया इतिहास बनाते हैं, जब युवा जागता है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है, जब युवा जागता है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है, उसकी ऊर्जा और उत्साह से विकास का दीप जलता है, उसकी ऊर्जा और उत्साह से विकास का दीप जलता है, हम ही किसान के सपनों का सम्मान है, हम ही किसान के सपनों का सम्मान है, हम ही सैनिकों के साहस का अभिमान है, हम ही सैनिकों के साहस का अभिमान है, आओ अपने समय और प्रतिभा का सही उपयोग करें, शिक्षा संस्कार और मेहनत को अपना मजबूत आधार करें, नशे आलस्य और बुराइयों से दूर रहें, सच्चाई और ईमानदारी की मार्ग पर, युवा शक्ति केवल ताकत नहीं जिम्मेदारी भी है, अपने परिवार समाज और देश के प्रति भागीदारी भी है, अपने परिवार समाज और देश के प्रति भागीदारी भी है, हम युवा हैं, हम बदलाव हैं, हम ही भारत

0: का स्वर्णिम भविष्य और नई पहचान है। हम युवा हैं, हम बदलाव हैं, हम ही भारत का स्वर्णिम भविष्य और नई पहचान। अब हम दूसरी कविता की ओर बढ़ते हैं, जो मेरी कविता है तलाश, जिसमें मैं खुद की तलाश कर रही हूँ, खुद के सपनों की। और ये सिर्फ मेरी ही तलाश नहीं, आप सबकी कहीं ना कहीं तलाश होगी। आप सभी लोग किसी न किसी चीज की तलाश में ढूंढ रहे होंगे। तो मेरी कविता है, तलाश है मुझे अपने सपनों की, तलाश है मुझे अपने सपनों की, मुझे तलाश है अपने ख्वाहिशों की, मुझे तलाश है अपने ख्वाहिशों की, मुझे तलाश है अपने ख्वाबों की, अपने पंखों की, मुझे तलाश है अपनी खुद की पहचान बनाने की। कहीं खो सी गई हूँ, न जाने कब मेरी तलाश पूरी होगी। कहीं खो सी गई हूँ, न जाने कब मेरी तलाश पूरी होगी। फिलहाल तलाश जारी है खुद को ढूंढने की, खुद की तलाश में खुद को ही ढूंढ रही हूँ। खुद की तलाश में खुद को ही ढूंढ रही हूँ, न जाने कब मिलेगी मुझे मेरी तलाश, न जाने कब मिलेगी मुझे मेरी तलाश। मेरी अगली कविता है, उड़ान बाकी है। मत पूछो मुझसे कितनी ठोकरे खाई है मैंने, मत पूछो मुझसे कितनी ठोकरे खाई है मैंने, पूछना है तो यह पूछो, पूछना है तो यह पूछो, हर ठोकर के बाद कितनी बार उठ खड़ी हुई हूँ मैं। रास्ते कठिन हैं, मंजिलें दूर हैं, पर हौसलों के आगे हर मुश्किल मजबूर है। रास्ते कठिन हैं, मंजिलें दूर हैं, पर हौसलों के आगे हर मुश्किल मजबूर है। आंधियां आएंगी, तूफान भी आएंगे, जो अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं वही इतिहास बनाएंगे। आज अगर संघर्ष है तो कल सफलता भी होगी, आज अगर संघर्ष है तो कल सफलता भी होगी, आज अगर अंधेरा है तो कल रोशनी भी होगी, आज अगर अंधेरा है तो कल रोशनी भी होगी। हार को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत का आधार बनाओ। हार को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत का आधार बनाओ। नदियाँ कभी पहाड़ों से रास्ता नहीं पूछती, वे अपना मार्ग स्वयं बनाती हैं, वे अपना मार्ग स्वयं बनाती हैं। ठीक वैसे ही सफल लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, ठीक वैसे ही सफल लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, वे अवसर पैदा करते हैं। अपने सपनों को इतना ऊंचा बनाओ कि मुश्किलें छोटी लगने लगे, अपने सपनों को इतना ऊंचा बनाओ कि मुश्किलें छोटी लगने लगे, अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि असफलताएं भी सीख बनने लगे। याद रखो सूरज हर शाम ढलता है, फिर भी अगली सुबह निकलता है, फिर भी अगली सुबह निकलता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, पर कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी उड़ान अभी बाकी है, तुम्हारी पहचान अभी बाकी है, और तुम्हारी जीत का आसमान अभी बाकी है।
1: उम्मीद करते हैं कि आपको आज का काव्य पाठ पसंद आया होगा। चलिए अब क्यों ना आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाया जाए और मूड को थोड़ा और भी बेहतर बनाया जाए।

0: दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब हम सही और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अपनी बातों को खुलकर और प्रभावी ढंग से रख पाते हैं?
1: बिल्कुल आस्था, अच्छे शब्द इंसान की सोच, संस्कार और समझदारी को दर्शाते हैं और किस शब्द का कहाँ और किस प्रकार चुनाव किया जाए इसके लिए शब्दों की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
0: और ऐसी ही जानकारी देने के लिए हमारी युवाणी हमेशा अव्वल रहती है अपनी यूथ डायरी के साथ।
1: दोस्तों, हमारा आज का हिंदी शब्द है समीपता, जिसका अर्थ होता है पास या निकट होने की अवस्था या भाव।
0: और इसे अंग्रेजी में प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस कहा जाता है। यह किसी स्थान, समय या संबंध की नज़दीकी को दर्शाने वाला शब्द है।
1: आइए इसका उदाहरण भी जान लेते हैं, जो कि है स्थान की समीपता कभी-कभी दिलों में भी नजदीकी ला देती है। और इसके पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो निकटता, नजदीकी और सौंदर्य। तो चलिए आज के अंग्रेजी वर्ड को भी जान लेते हैं, जो है पॉसिबल।
0: जिसका मीनिंग होता है प्लॉजिबल इज एन एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज रिजनेबल, बिलीवेबल और अपेरेंटली ट्रू। एंड इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा शी गेव अ प्लॉजिबल रीजन फॉर बीइंग लेट।
1: आस्था, हम इसके सिनोनिम्स की भी बात कर देते हैं।
0: बिल्कुल शालिनी, तो इनके सिनोनिम्स में शामिल होने वाले वर्ड्स हैं प्लॉजिबल, माफ करिएगा दोस्तों, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है पॉसिबल, क्रेडिबल एंड रिजनेबल।
1: दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यूथ डायरी पसंद आई होगी और इससे आपको भी मदद मिलेगी।
0: दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इतिहास में क्या कुछ खास है।
1: आज का दिन यानी कि 16 जून का इतिहास एक बेहद खास स्थान रखता है। इसी दिन वर्ष 1963 में सोवियत संघ की वेलिटिना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाली तथा अंतरिक्ष में कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला बनी।
0: और सन 1983 छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके अलावा सन 1903 हेनरी फोर्ड द्वारा फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना हुई, जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग में बड़ा बदलाव लाया।
1: साथ ही दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध भी इसी तारीख से है। वर्ष 2006 में नेपाल में माओवादियों का अंतरिम सरकार में शामिल होने पर सहमति प्राप्त हुई।

0: तो श्रोताओं लीजिए सुनिए, आयुष मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय वैदिक दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा संयुक्त रूप से संत रविदास घाट पर आयोजित योग के संदर्भ में विशेष सूचना।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और जागृत चेतना की दिशा में योग भारत की वह अमूल्य धरोहर है जिसने संपूर्ण विश्व को जीवन जीने की एक नई दृष्टि प्रदान की है। आज हम आपको एक ऐसे विशेष आयोजन की जानकारी देने जा रहे हैं जो न केवल योग के महत्व को रेखांकित करता है बल्कि माँ गंगा की अविरल सांस्कृतिक धारा के साथ स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार तथा वैदिक दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष योग अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान की परिकल्पना इसी क्रम में 17 जून 2026 को धर्म, संस्कृति और ज्ञान की नगरी काशी में यह विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

0: ये आयोजन संत रविदास घाट पर प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक संपन्न होगा। गंगा तट की पावन वायु, उदीयमान सूर्य की स्वर्णिम किरणें और योग की साधना, इन सब का समन्वय प्रतिभागियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक, विद्वान, शोधार्थी तथा काशी के अनेक विशिष्ट नागरिक अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व वैदिक दर्शन विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी करेंगे। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की एक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रिया है। नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना भी अधिक आत्मविश्वास और संतुलन के साथ कर पाता है। यही कारण है कि आज संपूर्ण विश्व योग को स्वास्थ्य और कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी अपने जीवन में स्वास्थ्य, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, तो इस विशेष योग कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बनें। अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ 17 जून की प्रातः संत रविदास घाट पहुंचें और इस जनकल्याणकारी अभियान में सहभागी बनें। आइए हम सब मिलकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें और गंगा तट से प्रसारित होने वाले इस स्वास्थ्य संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को इस विशेष योग आयोजन में सादर आमंत्रण। धन्यवाद। नमस्कार।
1: दोस्तों, हमें पता है कि आप सब आपके फेवरेट सेगमेंट का वेट कर रहे हैं और अब उसी की बारी आ गई है, आपके पसंदीदा रोजगार सूचना की, जिसका इंतजार हमारे श्रोताओं को बहुत ही बेसब्री से रहता है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने आस्था। SSC द्वारा CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के कुल 12,256 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी की जा चुकी है, जिसकी आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की पदों के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 27, 30 और 32 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी ग्रेजुएट पास होना चाहिए
1: और आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 सुनिश्चित की गई है। इसके जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.government.in पर विजिट कर सकते हैं।
2: तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य की जिसने काशी की पहचान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर।
1: सदियों पुरानी आस्था और आधुनिक सुविधाओं का अद्भुत संगम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज भारत की सांस्कृतिक विरासत और विकास का प्रतीक बन चुका है। इस परियोजना ने बाबा विश्वनाथ धाम को गंगा घाट से सीधे जोड़ते हुए श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को पहले कहीं अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाया है।
2: यह आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ प्राचीन विरासत का संरक्षण भी है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा में यह उपलब्धि काशी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।
1: दोस्तों, सीखने और सिखाने के सिलसिले यूं ही चलते रहेंगे, तो आइए अब जान लेते हैं आज और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आपसे हमारा कल का प्रश्न था,
2: हाल ही में नियुक्त भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS कौन बने हैं?
1: जिसका सही जवाब है जनरल NS राजा सुब्रमणी। और इसका सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं वो हैं चंदा चंदौली, मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी, दुर्गेश नागनपुरे वंदना बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से।
2: ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योतिष और शिवांश वर्मा।
1: और इसी के साथ दोस्तों अब तैयार हो जाइए आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है,
2: किस राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांग कल्याण विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग कर दिया है? अब जल्दी से इस सवाल का सही जवाब देकर आप भी बन सकते हैं विनर्स।
1: आप अपने आंसर्स हमें हमारे इंस्टा आईडी यूथ एयर वाराणसी पर भी भेज सकते हैं
2: या फिर हमारे इंस्टा आईडी, हमारा मेल आईडी youth@varanasi.gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो जल्दी करिए।

0: शालिनी, तुम आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
1: क्या बताऊं आस्था, गर्मी इतनी बढ़ रही है कि कोई काम ही नहीं किया जाता और मानसिक तनाव तो हो जाता है सो अलग ही। अचानक से इतनी गर्मी बढ़ना हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है।
0: बात तो एकदम सही कही तुमने। गर्मी का जो मौसम है अपने साथ तेज धूप और बढ़ते तापमान को जो लेकर आता है, यदि थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो शरीर में पानी की कमी, थकान, चक्कर आना और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यदि

0: हम कुछ सावधानियां अपनाएं तो इस मौसम का आनंद भी ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं।
1: सही कहा तुमने आस्था। सबसे पहले बात करते हैं पर्याप्त पानी पीने की। गर्मी के मौसम में शरीर से पसीने के रूप में काफी मात्रा में पानी निकल जाता है, इसलिए प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल ना करें। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पीते रहें। इसके साथ ही नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, लस्सी और घर का बना ताजा शरबत भी शरीर को ठंडक और ऊर्जा देती है।
0: बहुत सही। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, संतुलित और हल्का भोजन। गर्मियों में तला भुना और अधिक मसालेदार भोजन जो होते हैं ना, वो अपने भोजन में जितना हो सके उतना कम लेना चाहिए। और मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम और संतरा शामिल करें। ये फल शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के साथ साथ आवश्यक विटामिन और खनिज भी प्रदान करते हैं। साथ ही हरी सब्जियां और दही का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
1: अब बात करते हैं धूप से बचाव की। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक की धूप सबसे अधिक होती है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो इस समय बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने, सिर को टोपी, गमछे या छाती से ढक ले और आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा यानी सनग्लासेस पहने। इससे लू लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है।
0: ये बात तो तुमने एकदम सही कही शाली। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि गर्मी में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपको अधिक पसीना आने से त्वचा पर बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तो इसके लिए डेली नहाएं, साथ ही साफ कपड़े पहनें और हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें। पहले से कटा हुआ फल, रात का बचा हुआ भोजन और स्वच्छ पानी पीने से बचें, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।
1: सही कहा आस्था। गर्मी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है। उन्हें समय समय पर पानी पीने और तरल पदार्थ देते रहें तथा अधिक देर तक धूप में न रहने दें। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, चक्कर, उल्टी या अधिक कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्या हो तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें।
0: और यदि आप व्यायाम करते हैं तो सुबह में जल्दी या शाम को हल्का व्यायाम करें। दोपहर की तेज धूप में दौड़ना या अधिक शारीरिक मेहनत करने से हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए इससे बचें। पर्याप्त आराम और 7 से 8 घंटे की नींद भी शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: आजकल युवाओं में कोल्ड ड्रिंक जैसे जंक फूड का चलन बढ़ गया है, लेकिन याद रखें कि अधिक मीठे और गैस वाले पेय पदार्थ शरीर को कुछ समय के लिए राहत तो देते हैं, लेकिन वे पानी की कमी पूरा नहीं करते। इसलिए प्राकृतिक पेय पदार्थों को प्राथमिकता दें।
0: बिल्कुल। और गर्मी के मौसम में पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी की बचत करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। पेड़ न केवल वातावरण को ठंडा रखते हैं, बल्कि हमें शुद्ध हवा भी प्रदान करते हैं।
1: तो दोस्तों, स्वस्थ जीवन के लिए महंगी दवाइयों से अधिक आवश्यक है सही दिनचर्या और सही आदतें। यदि हम समय पर पानी पिए, पौष्टिक भोजन करें, तेज धूप से बचें और स्वच्छता बनाए रखें, तो गर्मी के मौसम में भी हम स्वस्थ, ऊर्जावान रह सकते हैं। अंत में बस इतना ही कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अपने साथ साथ अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी गर्मी से बचाव के उपायों से जागरूक करें।
0: और इसी के साथ मैं आस्था
1: और मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और गर्मी के मौसम में अपना पूरा ख्याल रखें।
0: और हम लोग आपको छोड़े जा रहे हैं एक प्यारे से गीत के साथ। इसी के साथ साथ नमस्कार।

0: ये वाणी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। केंद्र सरकार औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित कैले हो। एमे गांवन में कप सिरप के बिक्री पर दिहल गईल छूट वापिस ले लेल गईल बा। अब गांवन में कप सिरप का बिक्री आ वितरण खाली लाइसेंसी फार्मेसियन के जरिए कैल जाई।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से आवे वाला 21 जून के होखे वाले नीट यूजी के पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ावे आ पेपर लीक के अनिशा के खत्म करे बदे सरकार 22 जून ले टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेशा भेजले पर रोक लगा देले हो। एनटीए कहलस की प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन ने आ ओकरे जुड़ते बाद ले लागू रही। एजेंसी कहलस की टेलीग्राम के 30 तारीख ले पहले से पोस्ट कैल गल संदेशा के संपादित कैले के सुविधो बंद करे के निर्देश देहल गईल बा। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का नतीजा आज घोषित कर देहल गईल। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी नतीजा जारी कैलिन। एह वरिष एह परीक्षा में अलीगढ़ का वंदना सिंह पहला जगह पाके प्रदेश में टॉप कैले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हैं कि पछिला दशक में देश भर में बुनियादी ढांचा में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर भइल बा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माई गॉव का एगो पोस्ट साझा करत श्री मोदी कहले कि सरकार विकसित भारत के परिकल्पना के साकार करे बदे अगला पीढ़ी का और संरचना तैयार करे खातिर प्रतिबद्ध बा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 12 साल पूरा भइले पर प्रदेश का संसदीय कार्य आ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज लखनऊ में पत्रकार लोगों से बातचीत कैले। एह मौका पर वहां के कहने की केंद्र का मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 5,37,00,000 आवास बंट ले हवे। एमे उत्तर प्रदेश का 62,00,000 से बेसी परिवार शामिल हवे। इसी कड़ी में मिर्जापुर जिला के बीएलजे ग्राउंड में जिला प्रशासन सूचना और जनसंपर्क विभाग लखनऊ के ओर से आज विकसित भारत प्रदर्शनी का आयोजन कैल गईल। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल एकर उद्घाटन कैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में पछिला 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आ सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति भइल हो। आतंकवाद से निपटे बदे सरकार का सुन्न सहिष्णुता नीति के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक

0: आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कुशीनगर जिला के रामकोला थाना क्षेत्र में आज भईल एगो सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक के परिवार के 3 जने के मौत हो गई, वहीं एगो औरियो सदस्य घायल बा। ई दुर्घटना उस समय भईल जब एक के परिवार के 4 लोग एक के मोटरसाइकिल पर बैठ के बिहार के मदनपुर में देवी दर्शन बदे जात रहने आ एगो टैंकर उन्हें ठोकर मार देलस। गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के कुछ औरियो जिलन में आज दोपहरिया बादे तेज आंधी के साथे भईल हलुका है बूंदाबांदी से लोगों के उमस भरल गर्मी से कुछ राहत मिलल हो। समाचार पूरा भईल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में वसीयतनामा और उत्तराधिकार कानून विषय पर कृष्ण कुमार यादव से सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा सुनेगा रामनाथ और साथियों का गाया लोकगीत। 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगी बेगम अख्तर। रात 8:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 16वीं कड़ी का प्रसारण होगा। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा पंडित प्रेम कुमार मलिक का गायन। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कल यानी 17 जून सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल शाम 6:30 पर आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगले स्टेडियम लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले इंडिया बनाम नीदरलैंड मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मक्का की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में असामान्य रक्तचाप से होने वाली समस्याएं और समाधान विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर सुनिएगा विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार वादन और दिन में 12:45 पर संजय वर्मा का विचित्र वीणा वादन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे कुमार अम्बरीश चंचल। दिन में 1:15 पर गिरिलक्ष्मी कार्यक्रम में होगी चर्चा, साथ ही बातचीत के अलावा सुनेगा गीत संगीत। कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 2:30 पर। युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर आप सुन सकते हैं।

सकते हैं नंदलाल रवि और साथियों का गाया लोकगीत। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, कल शाम 6:30 पर आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत हेडिंग्ले स्टेडियम लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले इंडिया बनाम नीदरलैंड मैच के ऑफ

0: इंडिया बनाम नीदरलैंड मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
7: बदलो बदलो, आदत बदलो।
8: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
7: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं कुणाल गांजावाले की आवाज में फिल्म क्यों की का गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से, आवाज़ शान, नीरज श्रीधर और प्रियदर्शनी की है। इस गीत को लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: बोला भैया।
1: हाँ सत्तू भैया,
0: अरे देखा हो दऊ तो एकदम कहल जाओ कि कहियो घामे घाम कहियो छाए छाए, ऐसा मौसम बनावत हो कि कुछ समझ ही में ना आवत हो।
1: सही कहत हो भैया। जौन दऊ इस समय धूप करत हो ना भैया, सत्तू सत्तू भैया, वो दऊ देखा ये धूप से हमन के किसान लोगन के कब निजात दी हैं। यही हम लोग भी टेक लगा के देखत है, काहे कि देखा ना अपन खेती किसानी कैले में ना बड़ा सहज महसूस होता हो।
0: भोला भैया देखा, ढेर इंतजार ना करे के है। हाँ एकदम सुने में देखे में अब चारों ओर काने काने हो गई लग कि अब मानसून बड़ा जल्दी आई।
1: हाँ
0: और ये जान लग कि मानसून आई ना तो उससे पहले जवन हमनी का कुछ अपन काम है, वो चाहे खेती किसानी का हो खो, चाहे कहल जाओ कि अपने और भी ऐसा काम जोन कि अपने सामाजिक कार्य में कहल जा
1: हाँ
0: सकेला, या अपने
1: जोन जरूरी
0: धर
1: कर हो
0: या अपने धरती माई के जुड़वावे का काम,
1: जुड़वाए के काम हो।
0: जुड़वावे से हमार मतलब ई है कि भाई जोन वर्षा जल संरक्षण है ना, तो भाई देखो बरखा का दिन आवे वाला है, मानसून भी आवे वाला है, आ हमनी लोग जैसे भी हो सकेला वैसे वो जल के संरक्षण कइल जा, चाहे कहल जाओ कि अपने पूरा अपन धन बल तन दे के ओके, ऐसे कि जब ये वर्षा जल संरक्षित हुई ना तो ऐसे देखो अनेकों फायदा
1: कहे
0: हो।
1: ना भैया, देखा सत्तू भैया, पानी जो हो ना ये हम सब ही के जीवन का आधार हो। चाहे हम इंसान हुई, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कौनो धरती पर जो जीव जंतु हों, उस सब ही के पानी ना, ये जो धरती हो अपन, वो जीवे पानी जिए बदे वो आधार हो अपन, समझला भैया। तो एके बचौले खातिर वर्षा जल संरक्षण जोन बात बतौला है, ये बहुत अच्छा और बढ़िया माध्यम हो।
0: और ई जानला कि जोन ई माध्यम के बात कहतर ना, देखो ऐसे हर चीज में फायदा है, चाहे अपने धरती माता के कहल जाओ कि नमी के देख ल और वो नमी अपने खेती किसानी बदे देखा कितना बढ़िया है, चाहे जोन पिए वाला पानी हमनी का धरती के नीचे से जमीन के नीचे से आवत है वो अगर संरक्षण करत हैं जा तो देखो ओहू का स्रोत बनल रही।
1: कहे ना सत्तू भैया,
0: हाँ जोना
1: जैसे
0: के रिचार्ज प्रणाली भी कहल जाला कि
1: कहल
0: भाई
1: जाला।
0: जमी अपने धरती का रिचार्ज हो जाता पानी के माध्यम से।
1: देखा भैया हो, सत्तू भैया, जौन गर्मी में जहाँ भी देखा तालाब कुआं पोखरी जौन सुखा जाना, तो ई बरखा के पानी से ही देखा ओकर स्तर जौन हो अपने जल का भूजल जल स्तर जौन नीचे गिर जाला, वो यही बरखा के पानी से ओकर स्तर बराबर होला।
0: और बराबर के संगे संगे ई जान लेना कि जितना हो सके अगर हमनी को वर्षा का जल के संरक्षण संरक्षित करत हैं जा तो ई जान ल कि जितना अपने जमीनी के भीतर से पानी लेवे के है उतना अगर हमनी को पहले से ही संरक्षित कर चुकल हैं जा या कैले रहल जाई तो वो पानी का उपयोग कर जाए तो उतना हमनी को धरती के नीचे से अपने जमीनी के नीचे से पानी कम निकालल जाई। और जब पानी अंदर से कम निकली न भोला भैया
1: हाँ
0: तो
1: सत्तू
0: ई
1: भैया।
0: जान ल कि हमनी का आवे वाली पीढ़ी में जवन पानी का जरूरत है वो पानी बरकरार रही, काहे से कि अगर हमनी के देखो वर्षा जल तो ऐसा चीज ऐसा जुन्नू सा कि वो देखो आज हो ही या फिर नदी के माध्यम से कितना जल चल जाला समुद्र में आ ओकर ना कोनो उपयोग हो पावेला आ ना ओके हमनी का कहल जाओ कि ओसे कोनो अपन काम कर
1: लाभ ले
0: पावेंगे।
1: सकला। सही कहला सत्तू भैया। तो यही लिए भैया ना वर्षा जल संरक्षण का जोन मतलब हो, अब देखा एकरे बदे ना छते पे जोन बारिश का पानी गिरेला, जोन कहल जाला कि ई बेकार चल जाला, तो ओके सुरक्षित करे बदे छत पे पाइप लगावल जात हो, और वो पाइप पाइप के द्वारा वो पानी के कोनो टैंक में, तालाब में या जमीन में

0: ओके, पहुँचावल जाला ताकि जौन अपन जल का स्तर हो, जो धरती का जो गर्मी हो, एके शांत कैल जाए और वो पानी के उपयोग में लावल जाए।
1: भाई हम कहते हैं कि जितना हो सके अगर हमनी का पानी जमीन के अंदर चल जाता ना, ये जान ल कि हमनी का भविष्य उतने सुरक्षित होई।
0: कहे ना भैया।
1: और भोला भैया जवन पानी हम कहते हैं कि इधर उधर बह के चल जाता है, उसे हमार मतलब ये है कि भाई जैसे बारिश भइल नदी में, पानी बारिश का नदी में गइल और नदी के माध्यम से समुद्र में चल गइल, तो देखा वो पानी तो लौट के आवे के हो ना।
0: नहीं, बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा भैया।
1: हम कहते कि जितना हो सके वर्षा का पानी ओके अपने आसपास जितना पुरान कुआं हुआ ओकर साफ सफाई करा ल, या जितना तालाब हुआ ओकर तनी बांध बनवा ल ऊंचा ऊंचा, ताकि
0: पोखरा होके।
1: हाँ ताकि ओमे ज्यादा से ज्यादा पानी टिक सके। और जो तू छत वाला बात कैल है ना, तो देखा छत के माध्यम के जितना अपने छत पर पानी है गिरत है, ओकर बोरिंग करा के धीरे धीरे ओके जमीन के नीचे कर द। और हो सके तो कम पानी का प्रयोग कर जो जमीन के जो कहल जाला कि लिमिट मात्रा में है, लिमिट की भाई हमने के कुछ संचय मात्रा में है, और आज न तो काल ज्यादा उपयोग कर जाए तो भाई वो खत्मे हुई।
0: कहे ना सत्तू भी। अब देखा जो नहीं अपन बारिश का पानी जो हम लोग एकत्रित करत है कुआं तालाब पोखरी में, तो वो पानी से देखा हम लोग बड़ा काम ले सकल जाला। देखा उसे कहा कि अपने खेती किसानी में भी वो पानी का उपयोग हो जाए, अपने बागवानी में ओकर उपयोग हो जाए, और साथे साथे अगर ओके सही से जैसे कहा जाला फिल्टर करा देवल जाए तो ओके पिए में भी अपने घरेलू इस्तेमाल में भी करल जा
1: बिल्कुल
0: सकला।
1: भैया एकदम जोन तू कहला बात ना कि वो खेती में उपयोग करे। देखा आसपास अगर पोखरी है तालाब है तो हम तो कहब कि कभी वहाँ फिर बोरिंग वाला से पानी ना लेवे के चाहिए,
0: ना
1: बोरिंग
0: लेवे के
1: से
0: चाहिए।
1: पानी ना निकाले के चाहिए, वो तालाब का पानी ही अपने खेते में सींचे,
0: सीचे।
1: भले तनी दू पैसा कह जाओ कि लग ही जाओ, चाहे मेहनत ही लग जाओ। अगर हम कहते हैं कि पैसा ना लगे तनी मेहनत ज़्यादा ही लगत हो, तो उतनी मेहनत कर लो भैया,
0: कहे ना भाई।
1: ऐसे कि उससे तुहरी आवे वाली भविष्य आवे वाली पीढ़ी के ही फायदा
0: बिल्कुल भैया। और हम लोग किसान है जा,
1: है।
0: हम लोग मेहनत से कहाँ भागल जाला हो सत्तू भैया।
1: बिल्कुल भाई, तो मेहनत करे के है और ये वर्षा जल के ना संरक्षण करे के है, लेकिन हाई कुछ संदेश ये सुन लिया जाए और ओकरी बात बतकई हो।
0: बिल्कुल भैया।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बोला भैया,
0: हाँ सत्तू भैया।
1: देखा संदेश तो हो गई और हम कहम ना कि देखा आज नगद का बतकई है, और बतकही बदे ना देखा वकील साहब कृष्ण कुमार यादव भैया आ गए हम।
0: अच्छा हाँ, देखे थे भैया आ गए ना।
1: हम कहब ना कि तनी सा तू कगरी हो जाता तो हम उनसे तनी बतिया
0: आवा
1: लेती,
0: आवा भैया बैठा।
1: तो भैया उन सुना हम बतियाओ थे। किसान भैया देखा हमनी लोग भाई खेती किसानी करे नहीं जा, खेती किसानी की संगे संगे हमनी का घरेलू कुछ ऐसा काम भी पड़ जाला जोना के भाई जानकारी होखल बहुत जरूरी होला। जैसे कि भाई अगर हमनी के बैंक में जाते हैं जा तो बैंक का कुछ जानकारी रहे, या कोर्ट कचहरी जाते हैं जा तो कोर्ट कचहरी का कुछ जानकारी रहे। तो यही मैंने अपने हमनी के पंचायती में कह जला कि अलग अलग विशेषज्ञ लोग के या अलग अलग क्षेत्र से लोगन के बुलावे नहीं जा, और पंचायती के माध्यम से आप लोगन के जरूरी सूचना या जो जरूरी जानकारी होला ओके प्रदान करे नहीं जाए। तो ऐसे ही में आज हमने लोगन के बीच में आयल हैं कृष्ण कुमार यादव, जे कि पेशे से वकील हुआ। आज इनसे हमने लोग जानल जाए कि वसीयतनामा और उत्तराधिकार कानून का होला, और एकर अपने कह लो कि समाज में या अपने जीवन में एकर का उपयोगिता है, ये बारे में जानल जाए। तो सबसे पहले कृष्ण कुमार यादव जी, आपका हमने की कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, राम राम सबके प्रणाम।
1: तो वकील साहब, हमारी किसान भैरों के सबसे पहले तो ये बताएं कि वसीयतनामा ह का चीज, ऐसे वो लोग का समझें?
4: देखिए भैया, वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति मरे से पहले अपन इच्छा व्यक्त कराला
1: अच्छा।
4: कि हम अपन संपत्ति के देवे के है, के लेवे के है। उस संपत्ति हम अपने अनुसार उनके देवला, और एमन

0: कोई का जोर दबाव ना रहत
1: अच्छा
0: वसीयत में, वसीयत में कोई जोर दबाव ना रहत, अपने इच्छा से कोई भी व्यक्ति के, जरूरी ना कि उनका सगा संबंधित ही रहा, किसी भी व्यक्ति के वो अपन वसीयत कर सकना।
1: अच्छा मैंने कि अपन वसीयत कोई के दे सके ना।
0: जी
1: अच्छा तो जैसे कोई व्यक्ति है जे वसीयत कई चाहत है,
0: जी
1: तो ओके पहले का का तैयारी करे के हुई, का का जानकारी रखे के हुई वसीयत के बारे में, ए बारे में तनी बताएं।
0: पहली बात तो ये जान ले किसान बंधु भाई कि वसीयत जे करला ओके हमने वसीयत करता कह देला,
1: अच्छा
0: और ये पहलू पर वसीयत कुछ ऐसा उमन नियम बंद कि वही हिसाब से वसीयत होला, जिसे स्व अर्जित संपत्ति हम मानत है। स्व अर्जित संपत्ति एक ऐसा संपत्ति है जो व्यक्ति अपने तरीके से, अपने मेहनत से, अपने कमाई से बनावला,
1: अच्छा
0: और अपने कमाई मेहनत से बनवले के बाद वो बाद में विवाद न हो लोग के बीच में, चाहे अपन लोग हो चाहे कोई के भी उनकर इच्छा हो, विवाद न हो, और विवाद के सुलझावे खातिर वो वसीयत करे चाहला अपने इच्छा से,
1: अच्छा
0: और वही वसीयत होला और करे वाला वसीयत करता कहला।
1: तो जो आप स्व अर्जित के बात कहते हैं
0: जी
1: कि वो अपनी कमाई से अपन प्रॉपर्टी कहल जाओ या जो धन दौलत बनेले रहे हैं, तो
0: जी
1: करी बारे में आप बताओ थे। तो का जोन पुस्तैनी जमीन होले या संपत्ति होले
0: जी
1: ओके में ना जोड़ल जाला कि ओहू के जोड़ल जा सकेला।
0: नहीं, पैतृक संपत्ति जेके हमने खानदानी कह दिला, खानदानी संपत्ति का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलल चली आवला, एमन वसीयत ना होत,
1: अच्छा
0: एमन वसीयत का हक किसी का भी ना रहला, और एमन कानून जो उत्तराधिकार कानून होला उन नियम उमन अपनावल जाला,
1: अच्छा
0: वसीयत एमन ना होत।
1: तो ये जैसे कि अगर जे लोग वसीयत नामा करे जात हों या जो लोग करावे जात हों
0: जी
1: ओके कौन कौन कानून का कहल जाओ कि जानकारी रहे के चाहिए, ओकरी बारे में इतनी पहले बताई।
0: वसीयत करे बदे पहले तो सबसे पहले हमके दो गवाह का प्रयोग करल जाला,
1: हाँ
0: दो गवाह होए के चाहिए जो बहुत खास होए के चाहिए,
1: अच्छा
0: और वो खास में ऐसा न हो जो कि उनके संपत्ति के हकदार हो,
1: अच्छा
0: उनके संपत्ति के अलावा यानी उनकर कोनो हक उमन न हो, वो परिवार में न हो, वैसा हमारे गवाह होए के चाहिए, और बहुत ठोस गवाह होए के चाहिए
1: चाहे
0: ताकि बाद में वो पलट न जा। मेन जो वसीयत होला वो गवाह के ही ऊपर निर्भर होला, और गवाहियों की गवाही कर जला नहीं, ई अपने इच्छा से वसीयत ही कैले रहना अपने समय में,
1: अच्छा
0: दो गवाह को होला, और कुछ दस्तावेजी प्रमाण होला जोन हमके ओके प्रयोग कर जला, जवन जे वसीयत करत है वसीयत करता जो है ओकर कुछ प्रमाण लगला, जिसे ओकर आधार कार्ड लग जला, ओकर वोटर आईडी लग जला, और जो उत्तराधिकार है जेके वो करित चाहत हन उनकर कुछ प्रमाण लगला, और ओकरे बाद वो संपत्ति का जो भी संपत्ति है उस संपत्ति का जो, जैसे संपत्ति दो प्रकार के मानल जाला, एक चल संपत्ति एक अचल संपत्ति।
1: अच्छा
0: चल संपत्ति में होला कि हमार बैंक बैलेंस का हो, हमार गहना का हो, हमार रुपया पैसा, ये चल संपत्ति होगल। एक होला अचल संपत्ति जो संपत्ति जमीन से होगल मकान से होगल, तो ये दोनों का वसीयत में करल जा सकल जाला,
1: अच्छा
0: लेकिन जो अपने मन से बनवले है, मन से बनवले के बाद फिर क्या होला कि ओमन दस्तावेज दोनों तरफ से लगा रहा, एक वसीयत करता का, एक उत्तराधिकार जो उत्तराधिकारी वो था वो वसीयत का, उत्तराधिकारी में आधार कार्ड उनका लगा, कोई भी आईडी लग जाला, और ओकरे बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगा, यही ओमन दस्तावेज होला।
1: अच्छा आज वसीयत करे जाता ओकर का कागज लगी।
0: ओकर आधार कार्ड लगी, और जवन वो जौने चीज के करे जाता ओकर ओकर दस्तावेज लगी,
1: मैंने ओकर पूरा विवरण ओकर
0: पूरा
1: पूरा
0: विवरण ओके
1: कागज
0: लगे।
1: चाहिए।
0: हाँ ओकर पूरा विवरण लगे।
1: अच्छा तो ई हमारे किसान भी उनके बताएं कि अगर मान ली कोई अपनी स्वेच्छा से करल चाहत है या करे जात है, तो ऊ एकरा बदे कहाँ जाओ, कोना अधिकारी के पास जाओ या कोना कह जाओ कि दफ्तर में जाओ, ओकरे बारे में बताएं।
0: वो अपने नजदीकी यानी जिला में जो नजदीकी या कचहरी कह सकल जला हमने हिंदी में, न्यायालय हो, वो एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस होला, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ओकर रजिस्टर्ड होला, वो रजिस्टर्ड कराओ बदे वो मन, कोई जरूरी ना हो कि वो मतलब उनका कोनो स्टाम्प ड्यूटी लगा या कुछ ऐसा, वो सादे पन्ने पे पूरे विवरण के हिसाब से लिखा कि कौन संपत्ति इनके हम कौन हिसाब से दान करत थे, वो
1: अच्छा
0: दान के हिसाब से पूरी संपत्ति विवरण एक सादा पन्ना अपने हिसाब से बनवा ले या टाइप करा ले, या कोई वकील से मिलकर अच्छा सलाह ले करके उनके टाइप करा के वो रजिस्ट्रार ऑफिस के कार्यालय में जा करके वहां होके रजिस्टर्ड करा सकना।
1: अच्छा जीवन आप संपत्ति देवे के बात करते हैं, तो का अपन संपत्ति लोग कई लोगों में

0: बराबर बराबर या कहल जाओ कि कम बेसी का जो प्रतिशत होला ओमे भी लोग बांट सके ना, दे सके ना।
1: अगर संपत्ति खुद के बनावल हो, खुद के संपत्ति बनावल हो तो वो अपने इच्छा से बांट सकन।
0: अच्छा।
1: अगर वो पैतृक संपत्ति है तो ऐसा ना कर सकता, तभी उत्तराधिकार कानून के नियम के तहत जाए हुई जब वह व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, मृत्यु भैले के बाद उस संपत्ति अपने आप उत्तराधिकार जो भी है, जिससे उत्तराधिकार कानून में तीन
0: जिधर
1: कानून मानल गया है, जिससे एक हिंदू उत्तराधिकार नियम मानल गया है, एक मुस्लिम उत्तराधिकार नियम मानल गया है, एक भारतीय उत्तराधिकार नियम मानल गया है। तो हिंदू उत्तराधिकार नियम में ज्यादातर भारतीय में यही मानल जाला कि उनकर संपत्ति स्वेच्छा से वो सरकार के द्वारा अपन अपने हिसाब से हो जाला,
0: अच्छा
1: सबकर बट जाला।
0: अच्छा तो जो आप बटे के बात कहत हैं कि मृत्यु के बाद वो बट जाए,
1: जी
0: लेकिन मृत्यु से पहले अगर मान ले कोई है जे कह जाओ कि वो अपनी वसीयत जोन कैले हुआ ओके, अगर वो वसीयत के तोड़ल चाहता ना कोनो कारणवश,
1: जी
0: तो का ई टूट भी सकेला?
1: हाँ, वसीयत करता अपने जीते जी जितना बार चाहे वो वसीयत के तोड़ सकला, जोड़ सकला, या तो ओके रद्द कर सकला, या तो फिर दूसरे के वसीयत कर सकला, या तो बैनामा भी कर सकला, रजिस्ट्री भी दूसरे कर सकला, दान भी दूसरे कर सकला,
0: अच्छा
1: ओके पूरा अधिकार है।
0: अच्छा तो ये एक और हमारे किसान भैया लोग या हम ही जानल चाहते हैं कि मान ली कोई वसीयत कर दे ले है, तो का अगर वो फिर दूसरा के बयानामा या फिर दूसरा के वसीयत करे जाता तो का जो पिछला वसीयत है वो खुद से ही खारिज हो जाए, खारिज का हमारा मतलब ये है कि खत्म हो जाए, तो का ओकरा बदे भी कोनो प्रार्थना पत्र देवे के होई ओके कैंसिल करावे खातिर कि अपने आप कैंसिल हो जाए?
1: ये बहुत अच्छी बात पूछना है किसान भाई की, बहुत सही बात बताओ जाते हैं कि अगर एक जने के वसीयत कैले हूँ, दूसरा जने के वो करे जात हैं, तो दूसरा जने के जोन करे जात हुआ तो वो पहला जोन के जने के जेके वसीयत वो कैले वो जीरो मान लो जाये,
0: अच्छा।
1: दूसरा वसीयत सही हो जाये, और मृत्यु तक जब तक वो मरत ना हो, मर गई ना, तो मरले के बाद जोन अंतिम में वसीयत के लिए रही है वही वसीयत जो है
0: अच्छा तो
1: रजिस्टर्ड मानल जाये।
0: का जैसे मान लीजिए जो हम कहते रहिए कि कैंसिल हो जाए, तो का ओमे जो पहले गवाही लोग कहले हुआ या पहले जो गवाह रहल है उन लोगों के भी मजिस्ट्रेट की या जो
1: ना
0: उप
1: ये मन कुछ ना हुई,
0: अच्छा
1: ये मन कुछ ना है, वही अंतिम वाला जो गवाही रही, अंतिम वाला जो वसीयत रही वही के मान्य करल जाये, बाकी सब जीरो मानल जाये
0: अच्छा
1: मरले के बाद।
0: अच्छा आप हमके एक और बात बताएं कि जैसे मान ली वसीयत तो हो गई, वसीयत लोग लिखवा लेना या वसीयत लिखा गई, तो
1: जी
0: ओकरी बाद जो उत्तराधिकारी है तो ओके मरला के बाद आप कहत रहनी है कि वो ओके दाखिल करा, तो ओके दाखिल करे खातिर कहाँ जाए के हुई और ओकर का प्रक्रिया हुई एकरी बारे में बताएं।
1: ओकर प्रक्रिया सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ओकर वसीयत नामा लगा करके जो कुछ भी है अपने हिसाब से वो सब जो सिविल के प्रक्रिया होला जे वो अपन कर सकना।
0: और एक और चीज हम आपसे जानल चाहब कि मान ली वसीयतनामा कोई लिखे जाता तो का ए में बहुत ज्यादा खर्च लगेगा कि कम भी खर्च में ही हो जाता?
1: हम बताओ तानी कि इमन कुछ खर्च ना लगला, बहुत ऐसा किसान भाई हैं कि डरन ना कि हम जाब न्यायालय में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए तो बहुत पैसा लगी, बहुत खर्चा आई, बहुत वकील साहब लोग ले रही हैं, लेकिन ऐसा कोनो बात ना है, एक रुपया आपका खर्च ना होए के है, ना स्टाम्प ड्यूटी लगे के है, ना कुछ लगे के है। हाँ अगर आप ओके टाइप वगैरह करावत हुआ, कुछ कागज लिखत हुआ, तो वही का खर्चा जौन भी लगी 150 वह लगी। और दूसरी बात की कुछ शुल्क जो कि मामूली शुल्क मानल जाला, निर्धारित ना होला, मामूली शुल्क रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लगला रजिस्ट्रेशन करावत के समय, रजिस्टर्ड करावत के समय।
0: तो ये प्रकार से लोग अपन उत्तराधिकारी चुन सके ना, अपन वसीयत भी करा सके ना।
1: करा सकना।
0: एक और चीज वकील साहब आपसे हम जानल चाहब कि बहुत लोग दुगो चीज में कह जाओ कि दुविधा में रहे ना कि वसीयत और वरासत,
1: जी
0: तो वह का वसीयतनामा और वरासत एक ही चीज है कि ये दोनों अलग अलग चीज है?
1: नहीं, जब ये बहुत अंतर बा, जमीन आसमान का अंतर बा, कि वरासत बहुत अलग बा, वसीयत बहुत अलग बा। वरासत का होला कि मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात स्वतः जो उनकर उत्तराधिकार रही हैं उनकर नाम चढ़ जाए,
0: अच्छा।
1: और ये पैतृक संपत्ति में ऐसे चढ़ चलिया वाला, पैतृक संपत्ति में, या अगर वह संपत्ति अपने हिसाब से भी बनौले हुन तो भी उनके जे परिवार में उत्तराधिकार है उनके नाम से नाम चढ़ जाए, स्वतः स्वतः चढ़ जाए।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद जो वसीयत हो, वसीयत में ओके अपने इच्छा से, मृत्यु के पहले अपने

0: इच्छा से अपने इच्छा के लोगन के वो वसीयत करावल जाला, वो ये अंदर दोनों में है।
1: अच्छा, तो मतलब कि आप जो अंतर बताओ थे एक लोग ध्यान दे। चलत चलत आप वसीयत नामा के बारे में हमारे किसान भैलों से का बतावल चाहब कि ऐसे कईनी प्रकार से उन लोग के फायदा है, एक करावे के चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात पूछनी है, इससे फायदा ये है, हम किसान भाई से कहब कि अगर भविष्य में उनके लगा कि नहीं ये संपत्ति के लेके बहुत विवाद है, बहुत झगड़ा बा, तो ये चीज के सुलझाओ बदे वसीयत नामा का सबसे बढ़िया प्रक्रिया है जो कि उनके अपनावे के चाहिए। कुछ खर्च ना हो कि ओकरे बाद में विवाद न हो, एकरे बदे वसीयत बनावल गला, ये वसीयत आप लोग करी।
1: तो कृष्ण कुमार यादव जी, आप हमने लोन के कार्यक्रम कृषि जगत में आईनी और इतना बढ़िया जानकारी देनी हमारे किसान भी लोन के, एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सत्तू भैया,
3: हाँ भैया,
2: वसीयत नामा और उत्तराधिकार कानून पे बड़ा नगद का बत कही कैला हो कृष्ण कुमार यादव भैया से।
3: भाई देखा, ऐसा कह जाओ ना कि ऐसा ही विषय रहला कि भैया देखा कितना नगद का कर मन कुल सूचना दिया ना हमने के,
2: तो बात बत गई तो सत्तू भैया हो गल, अब आगे का सुनो थोड़ा।
3: भाई देखा, रामनाथ और उनके साथी लोग का ना देशभक्ति गीत हुई, लेकिन उससे पहले एगो सूचना बा, और सूचना ई बा कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय वैदिक दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये दोनों की तरफ से ना इस संयुक्त रूप से संत रविदास घाट पर आयोजित कल जात है, और उनमें आयोजित ई कल जाए कि कुछ योग है, और ये सूचना में बतावल जाए, वही संदर्भ में ये सूचना बा, आओ भैया उनके सुनवावल जा, फिर सुनल जा ओकरी बाद गीत गवाना ही भी।
2: बिल्कुल भैया, सुनवा दे।
4: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और जागृत चेतना की दिशा में योग भारत की वह अमूल्य धरोहर है जिसने संपूर्ण विश्व को जीवन जीने की एक नई दृष्टि प्रदान की है। आज हम आपको एक ऐसे विशेष आयोजन की जानकारी देने जा रहे हैं जो न केवल योग के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि माँ गंगा की अविरल सांस्कृतिक धारा के साथ स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार तथा वैदिक दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष योग अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान की परिकल्पना आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक योग और स्वास्थ्य का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसी क्रम में 17 जून 2026 को धर्म, संस्कृति और ज्ञान की नगरी काशी में यह विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन संत रविदास घाट पर प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक संपन्न होगा। गंगा तट की पावन वायु, उदीयमान सूर्य की स्वर्णिम किरणें और योग की साधना, इन सब का समन्वय प्रतिभागियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक, विद्वान, शोधार्थी तथा काशी के अनेक विशिष्ट नागरिक अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व वैदिक दर्शन विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी करेंगे। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की एक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रिया है। नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना भी अधिक आत्मविश्वास और संतुलन के साथ कर पाता है। यही कारण है कि आज संपूर्ण विश्व योग को स्वास्थ्य और कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी अपने जीवन में स्वास्थ्य, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, तो इस विशेष योग कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बनें। अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ 17 जून की प्रातः संत रविदास घाट पहुंचें और इस जन कल्याणकारी अभियान में सहभागी बनें। आइए हम सब मिलकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें और गंगा तट से प्रसारित होने वाले इस स्वास्थ्य संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को इस विशेष योग आयोजन में सादर आमंत्रण। धन्यवाद। नमस्कार।

0: हमके देत बा गवाही मोर तिरंगा मशहूर।
1: रामनाथ और उनके साथी उनका देखा ही कितना बढ़िया देशभक्ति गीत रहा भैया।
0: बिल्कुल भैया।
1: ए भैया हम
0: सत्तू
1: तो
0: भैया।
1: कहो कि काल का सवेरे सुनाओ तो वो तो नहीं बता दो।
0: हाँ तो कल बिहाने 6:05 पे होई खेती का बात, विषय रही मक्का की खेती, जानकारी दही दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: तो भैया लोग ये जरूरी बात कही सुनी लोग। और भैया
0: हाँ सत्तू भैया।
1: अब हम कहम ना कि देखा चले के बेला हो गई ल और अपने भैया लोन से ना कहल जाओ कि भाई देखा जो शुरू में कहनी हो जाना कि वर्षा जल का संरक्षण करी लो
0: बिल्कुल करेक्ट
1: भाई
0: छे।
1: देखा करे के हो। और हम कहम ना कि अब जितना जल्दी हो सके भाई मानसून आई तो और भी जौन अपन खेती किसानी का काम हो के कर लेवे के है और अगल बगल जौन छोटा छोटा गड्ढा हुआ

0: जहाँ पानी लग के मच्छर वगैरह भी
1: बन सकल, पैदा हो
0: हाँ
1: सकल ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई
1: ओके, भी ध्यान देवे के चाहिए।
0: एकदम ओहू के पार्ट देव लोग और ना चलो भैया से विदाई लिहल जाए। तो पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म तुलसी का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में फिल्म फिर वही रात से। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देवबर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म गीत गाता चल से, आवाज जसपाल और साथियों की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। आरती, ये गजराज नगर थाना ओबरा जनपद सोनभद्र की निवासिनी है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र द्वारा ये सूचना है। आरती के बारे में जानकारी की बात इस प्रकार से है, ये 13 मार्च सन 2026 से लापता हैं। इनकी लंबाई 5 फीट है, आयु 22 वर्ष, चेहरा सामान्य है, सामान्य बाल हैं, शरीर की बनावट भी सामान्य है, ये हिंदी भाषा बोल लेती हैं। आरती के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक

जनपद सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है, ये सूचना भी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र द्वारा प्राप्त है। बिंदु निवासिनी आशाताली थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र की निवासिनी है। बिंदु 8 मई सन 2026 से लापता है। बिंदु के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 39 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा है, गोल चेहरा है। ये भूरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है और वो भी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र द्वारा प्राप्त है। सीमा निवासिनी तिलौली कला निवस्ती थाना कर्मा जनपद सोनभद्र की निवासिनी है। सीमा के बारे में जानकारी की बात इस प्रकार से हैं, ये 30 मार्च सन 2026 से लापता हैं। आयु 30 वर्ष है, लंबाई 5 फीट, एकेहरा बदन है, लंबा चेहरा है, ये हिंदी भाषा बोल लेती हैं। सीमा के बारे में यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 1,000,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने

0: का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगे की थीं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरीघाट औरिहार नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक को भी गति मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में सातवें बड़े मंगल के अवसर पर भक्त हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अयोध्या में भी भक्त हनुमानगढ़ी सहित कई अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अयोध्या में आज ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन पूजन कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया, साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर के कई स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति, सेवा और श्रद्धा के इस पावन माहौल से अयोध्या पूरी तरह राम और हनुमानमय नजर आ रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 17 जून को होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज मैदान पर पहले अफगानिस्तान की टीम ने अभ्यास किया और इस समय भारतीय टीम पसीना बहा रही है। भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के

आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: मीडियम 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए, आयुष मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय वैदिक दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त रूप से संत रविदास घाट पर आयोजित योग के संदर्भ में विशेष सूचना।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और जागृत चेतना की दिशा में योग भारत की वह अमूल्य धरोहर है जिसने संपूर्ण विश्व को जीवन जीने की एक नई दृष्टि प्रदान की है। आज हम आपको एक ऐसे विशेष आयोजन की जानकारी देने जा रहे हैं जो न केवल योग के महत्व को रेखांकित करता है बल्कि माँ गंगा की अविरल सांस्कृतिक धारा के साथ स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार तथा वैदिक दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष योग अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान की परिकल्पना आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है जिसके अंतर्गत गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक योग और स्वास्थ्य का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 3 जून 2026 को धर्म, संस्कृति और ज्ञान की नगरी काशी में यह विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन संत रविदास घाट पर प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक संपन्न होगा। गंगा तट की पावन वायु, उदीयमान सूर्य की स्वर्णिम किरणें और योग की साधना, इन सब का समन्वय प्रतिभागियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक, विद्वान, शोधार्थी तथा काशी के अनेक विशिष्ट नागरिक अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व वैदिक दर्शन विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी करेंगे। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की एक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रिया है। नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना भी अधिक आत्मविश्वास और संतुलन के साथ कर पाता है। यही कारण है कि आज संपूर्ण विश्व योग को स्वास्थ्य और कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी अपने जीवन में स्वास्थ्य, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं तो इस विशेष योग कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बनें। अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ 17 जून की प्रातः संत रविदास घाट पहुंचे और इस जन कल्याणकारी अभियान में सहभागी बने। आइए हम सब मिलकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें और गंगा तट से प्रसारित होने वाले इस स्वास्थ्य संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को इस विशेष योग आयोजन में सादर आमंत्रण। धन्यवाद, नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म राम तेरे गंगा मैले का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म आक्रमण से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म राही बदल गए से। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, शब्द रचना गुलशन बावरा की और संगीत राहुल देव बर्मन का।

कार्यक्रम रसरंग का अगला और आखिरी गीत आइए सुनते हैं फिल्म जीत से, आवाज सोनू निगम और अलका याग्निक की है। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं बेगम अख्तर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी बेगम अख्तर। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

0: भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जनकल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे

0: इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
1: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
0: जी,
1: विश्वास और जनकल्याण
0: जी,
1: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जनकल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
0: जी।
1: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
0: जी,
1: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जनकल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
0: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं, तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
1: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने, हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
0: जी।
1: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
0: जी।
1: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
0: जी।
1: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
0: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की आपने,

0: जीरो इमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
1: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है जी। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है जी। लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं, वहां PM2.5 और PM10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
0: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे ताकि

0: हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना
1: बिल्कुल
0: कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है। तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है। इसके लिए अपना आपको एनवायरनमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहाँ पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो

0: की संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है, और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय है उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था, तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं, और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया, और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े

0: की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता,
1: बिल्कुल
0: है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है।
1: जी
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है, उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है
1: बिल्कुल
0: पक्षियों के
1: जी
0: लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड
1: जी
0: तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो,
1: जी
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे?
1: जी
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता
1: बिल्कुल
0: है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा।
1: जी
0: आप एक बात बताइए
1: जी
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है?
1: जी
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?
1: जी
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन,
1: जी
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है, ये नेट जीरो के है।
1: जी
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है, ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है, ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है, वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है, वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ईएसजी है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाएं,
1: जी
0: अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले।

0: और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है।
1: जी
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए,
1: जी
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
4: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052, बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
5: जी हाँ श्रोताओं, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। मन का

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत गीत मिनिमम 241.5 चैनल मीटर पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध

0: विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुवाई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।

0: वो अनपनिश्ड।
1: वहीं सात पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
2: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw

0: ओलंपिक्स के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के शहर एविया में जारी G7 समिट में एक आला सतह के वर्किंग इजलास में हिस्सा लिया। इस इजलास का मौजू था नई शराकत दारियां और बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम की तामीर नौ का फरोग। इस इजलास में G7 मुल्कों के लीडर, शराकत दार ममालिक और आलमी बैंक और अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक के सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से वजीर आजम मोदी और शरीक होने वाले दीगर लीडरों के बाकायदा खैर मकदम के फौरन बाद ये मीटिंग शुरू हुई। एक ग्रुप फोटोग्राफ के बाद वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी की और लिखा कि भारत और G7 ममालिक आलमी खुशहाली, पायदारियत और इंसानों की फलाह को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे अंकित कुमार, जो वजीर आजम के G7 के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके हमराह गए हुए हैं, ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ कराने की गरज से एविया से ये रिपोर्ट भेजी है।
1: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। उर्दू खबरों के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
0: इससे कबल आज दिन में वजीर आजम कल शुरू हुए समिट में शिरकत के लिए दो रोजा दौरे पर एविया पहुंचे। अपनी आमद के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा कि वो अहम आलमी मामलात पर दुनिया के लीडरों के साथ बातचीत और तबादला ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक ज्यादा पायदार और खुशहाल कुर्राए अर्ज की जानिब इज्तिमाई कोशिशों में पेशरफ्त के तई पुरअज़्म रहेगा। समिट से अलग वजीर आजम कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, इंग्लैंड के वजीर आजम केयर स्टार्मर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। आज शाम देर गए वो सदर मैक्रों की जानिब से मुनक़िदा एक शानदार इशाइये में शिरकत करेंगे। समिट के दौरान एक और अहम बात वजीर आजम मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली मुलाकात है। दोनों लीडरों के मुतालिक तवक्को है कि वो कई शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के तरीके कार पर तबादला ख्याल करेंगे, साथ ही बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले अहम वाकयात पर तबादला ख्याल करेंगे। फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम मोदी कल शाम पेरिस पहुंचेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज फ्रांस के नीस मैसेना में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का आगाज किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि फ्रांस के बावकार खुर्दा कारोबारी मकामात में से एक में भारत के आलमी दर्जे के डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म को लाना UPI की आलमी पैमाने पर तौसी में एक और नुमाया कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहल बड़े पैमाने पर भरोसे, बिला रुकावट और इंटर ऑपरेबल डिजिटल हल फराहम करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि यह आगाज भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तसादी और तकनीकी ताल्लुकात को मुस्तहकम करता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जाम शराकत दारी की बढ़ती हुई गहराई और उमंगों की अक्कासी होती है। बड़े सनती मुल्कों के ग्रुप ऑफ 7 समिट के मौके पर अमरीकी इत्तेहादियों ने आज रूस यूक्रेन तनाजे के 4 साल से ज्यादा अरसे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन की हिमायत के एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मेजबान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो ये ख्वाहिश करते हैं कि ट्रंप को तरगीब दी जाती रहे कि वो यूक्रेन की हिमायत और रूस पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखें ताकि किसी अमन माहदे तक रसाई में मदद मिले। ट्रंप के तहत अमरीका ने यूक्रेन के लिए इमदाद में कटौती की है। फ्रांस और उसके यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक अब कीफ को फौजी और माली इमदाद फराहम करने वाले बड़े ममालिक बन गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी आज सुबह वर्किंग इजलास में G7 लीडरों के साथ शिरकत की, लेकिन मुज़ाकरात जल्द ही खत्म हो गए क्योंकि लीडरान सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के लिए जमा हुए थे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आला सतह की ज़राअत से मुतालिक एक मीटिंग में शिरकत की और 2026 की खरीफ की फसल

0: साथ ही पायदार तरक्की के लिए तआवुन की बात भी की गई है। ईरान ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुआहदे के तहत इसराइल को लिबनान से बाहर निकलना होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइल की जारी मौजूदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने वजाहत नहीं की है कि आया लिबनान कतई मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। इधर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल मुआहदे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला करार दिया था और कहा था कि इसराइल की अपनी तरजीहात हैं और वो जब तक जरूरी होगा उस वक्त तक लिबनान में एक बफर जोन में रहेगा। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने वाला है और इससे कब सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि मजकूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह के मौसमी हालात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार जजायर में भी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल ज़ैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में शुमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाद हिस्सों में भी तेज बारिश का इम्कान है। भारत की फेंसिंग एसोसिएशन FAI ने शमशेर जनी की 26वीं सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत की सीनियर टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये चैंपियनशिप 19 से 24 जून तक दिल्ली में मुनक़िद होगी। भारत इस बावकार कॉन्टीनेंटल मुकाबले की पहली मरतबा मेजबानी करेगा, जो कि एक तारीखी संग मील है। 30 से ज्यादा ममालिक और 400 से ज्यादा सरकर्दा खिलाड़ी इस मुकाबले में शिरकत करेंगे। भारत की 24 रुकनी टीम में 12 ख्वातीन और 12 मर्द शामिल हैं, जिसकी क्यादत भारत की पहली और वाहिद शमशेर जनी की ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात अमरीका के शहर न्यूजर्सी में ग्रुप एक मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल के दरमियान मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। आखिर में ब्रिटेन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबरा इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वजराए आजम नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में ये सूफियाना गीत।
2: Uno, dos, tres, cuatro.

0: ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा।

0: फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, दामने यार तक नहीं पहुंचा, हो गया वो कफस से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना,
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर्द से सवाली नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने

जर्ब से बढ़ के हो इतना नहीं मांगा जाता, जर्ब से बढ़ के हो इतना नहीं मांगा जाता, प्यास लगती है तो दरिया नहीं मांगा जाता।

बेगुनाह थी। वो एक मिटी हुई सी इबारत बनी रही, चेहरा खुली किताब था, किस्मत सियाह थी। शहनाइयां उसे भी बुलाती रही मगर, शहनाइयां उसे भी बुलाती रही मगर, हर मोड़ पर जहेज की कुर्बान गाह थी। और वो चाहती थी रूह उसे सौंप दे मगर, वो चाहती थी रूह उसे सौंप दे मगर, उस आदमी की सिर्फ बदन पर निगाह थी।

0: खामोश आंख वीरा दिल परेशान ज़ुल्फ बरहम लब खामोश अब तो वो कुछ और भी प्यारे नजर आने लगे।
1: एक बार इशारा तो कर दे, एक बार इशारा तो कर दे।
0: ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं,

0: के साथ साथ गुलशन में सोचता हूँ बबूल भी होंगे, फूल के साथ साथ गुलशन में सोचता हूँ बबूल भी होंगे, क्या हुआ उसने बेवफाई की, उसके अपने उसूल भी होंगे।
1: तकदीर के गुलशन का शायद, तकदीर के गुलशन का शायद।
0: यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ।

अल्ताफ रजा के गाए इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गज़लों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह, और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बापे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और ना

वही रंगीन टेलीविजन, सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया, उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है, डियोगो माराडोना। साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं, लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हराकर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम से इसे जाना जाता था, तो मल्ल युद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
2: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे
1: जी।
2: तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा
1: जी।
2: और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में
1: जी जी।
2: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है
1: जी जी।
2: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
1: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे, तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं आप?
2: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच में अंतर है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज का बहुत फर्क आया हुआ है
1: जी।
2: पहले जो कुश्तियाँ थी हमारे पास मैट तो थे मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीजें नहीं थी
1: जी।
2: उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी
1: जी।
2: हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते
1: जी
2: थे
1: जी।
2: मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी हैं और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
1: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है, आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
2: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन
1: जी।
2: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है
1: जी।
2: और ये चीज सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती, इस चीज का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है तो उसका खिलाड़ी उस चीज को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
1: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है, तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप

0: अपने खिलाड़ी को जो आपका शिष्य है उसे किस तरह समझाते हैं, या आप क्या सलाह देना चाहेंगे इसमें?
1: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे। तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे, तो हम इस चीज़ की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं जिससे कि उसके हारने पर
0: जी,
1: उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज़ हमेशा तैयार रखते हैं कि बेटा ये आखिरी नहीं है, ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो, क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा। तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई उसको। आजकल आधुनिकता की, जैसे मैंने बात की, तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रही है तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं साइकोलॉजिकल। और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है, इससे आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
0: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता
1: जी
0: है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
1: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, डाइट प्रोग्राम क्या है, उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे ही पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम लोगों ने अच्छा अपना मेडल खो दिया। तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर ही, और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आखिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, अब उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते। और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा घट रहा है, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशंस की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती
0: जी,
1: है।
0: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
1: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज़ करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है, आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है, तो क्या गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज़ हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
0: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
1: प्रॉपर ये है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है। हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो या मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना फिट है। उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं। जब गलतियां करेगा और उसका सबसे बड़ा जो चीज होती है, मैंने जो बोला लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है, अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं अगर ओवरलोड है तो नहीं कर
0: बिल्कुल
1: पाएंगे उस चीज को,
0: बिल्कुल
1: और गलतियां होती हैं, तो
0: जी।
1: हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
0: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है तो चूंकि ये आम बात है खेल में।

0: है ना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
1: देखिए कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं।
0: जी
1: हाँ मैच चल रहा है, कभी हो सकता है कि आप एक दो पॉइंट से आगे हैं, एक दो
0: जी
1: पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है। जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है,
0: जी
1: छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में 2 मेडल आए, एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और जो कंडीशन आप बता रहे हैं, मेन कंडीशन वही थी। हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रहे, मेंटली स्ट्रांग थी,
0: जी
1: उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश। तो एज ए कोच हम ये कहते हैं, बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो, जितनी आपके पास वो आप वहां पर लगाओ। साक्षी मलिक ने लगाया था, मेडल लाया। नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 12-4 से हार रहे थे,
0: जी
1: लास्ट में बाई फॉल करके 30 सेकंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती। तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है। और एज ए कोच जो भी साथ में होता है, हमें अदर कोच है, जो भी टीम कोच गया, वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है, बेटा आप अपना ऑल आउट करो, जितना है आप अपना पोटेंशियल या जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहां पे।
0: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की,
1: जी
0: तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है?
1: मुख्य चुनौतियां तो देखिए हमारे पास सबसे यही थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे।
0: जी
1: मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, लोग डोमिनेट हैं कि हाँ हमारी बच्चियां जाएं,
0: जी
1: और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी।
0: जी
1: मगर
0: जी
1: महिला और उत्तर प्रदेश, आज के डेट में महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है,
0: जी
1: बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत
0: जी
1: ज्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर।
0: जी जी जी
1: और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं,
0: जी जी
1: कुश्ती बहुत अच्छा गेम है। महिलाओं के जहां तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है। आप ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से, मानसिक
0: जी
1: रूप से मजबूत करने के लिए लेकर
0: जी
1: आइए।
0: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना चाहिए?
1: देखिए एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है,
0: जी
1: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है। तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है।
0: जी
1: 10 साल तक बच्चा हर चीज़ को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना है कि 10-11 साल की उम्र से आप बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अभी ये प्रोफेशनली तरफ जाना चाहता है
0: जी
1: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
0: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
1: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है,
0: जी
1: ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफी अच्छे मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल से लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं।
0: जी
1: इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
0: जी ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी
1: जी
0: जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
1: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं,
0: जी
1: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल,
0: जी
1: अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में
0: जी जी
1: एक
0: जी
1: दो अंकों के अंतर से
0: आ रहे
1: मेडल से रह गए थे,
0: जी
1: उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है,
0: जी
1: अंतिम पंगाल
0: जी
1: और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग
0: जी
1: करती
0: जी
1: हैं।
0: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
1: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है अभी एशियन गेम्स ट्रायल में, वो दीपक पुनिया से ही हारा।
0: जी
1: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियंस बहरीन में हुए थे, उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए,
0: जी जी
1: यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
0: जी जी
1: चंचल सिरोही है उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीमें हैं हमारे पास, बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में
0: जी
1: जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: जी, ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां

0: देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
4: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
5: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
6: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

0: बापू ने कहा था,
1: सत्य ईश्वर के समान है और सच्चाई का मार्ग सदैव सबके लिए कल्याणकारी है।
0: आइए सत्याग्रह को बनाएं राष्ट्र निर्माण और विकास का मजबूत आधार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है पंडित प्रेम कुमार मलिक का गायन। राग है पूरिया कल्याण। आपके साथ तबले पर संगति की है अनूप बैनर्जी ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित प्रेम कुमार मलिक का गायन। राग था पूरिया कल्याण। आपके साथ तबले पर संगति की थी अनूप बैनर्जी ने। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH TRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास

0: उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held

0: reached between United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो चुके हैं। संपन्न होती है हमारी ये सभा कल प्रातः 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।